सुप्रभात, हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: चार प्रसारित किए जाएंगे जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार

ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत वंदनवार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, बीते हुए कल की चिंता आज की रोशनी को धुंधला कर देती है। सच्ची दौलत अच्छे रिश्ते और शुद्ध विचार हैं। इसलिए हर सुबह को एक नए मौके के रूप में देखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज आप सुनिएगा इस पाठ का भाग 201। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का पांचवा भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सुनील दत्त पर। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारस नाथ से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। पर सुनिए सदा बहार नगमे और 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान में डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई। यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशन है दीना नाथ का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। 6:35 होने वाले हैं। आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 201।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग वृंदावनी सारंग, आज आपको सुनवा रहे हैं राग धनाश्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को सादर प्रणाम। पिछली कड़ी में मैं आपको 19वीं शताब्दी के महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा हिंदी भाषा में रचित बंदिशों के बारे में बता रही थी। आज उनकी एक और कृति पेश करती हूँ जो राग धनाश्री में है। इसकी शैली भी कुछ ध्रुपद जैसे है। साहित्य इस प्रकार है। शीस गंग भस्म अंग अर्धंग गौरी संग, यानी कि बंदिश शिवजी की स्तुति में है। वैसे तो स्वाति तिरुनाल विष्णु भक्त थे और अधिकतर कृतियां पद्मनाभ स्वामी की स्तुति में है। तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वह बहुत ही मशहूर है और महाराजा के परिवार के सदस्य सदियों से यहाँ की विशेष पूजाओं में भाग लेते आए हैं। एक और बात भी बताना चाहूंगी, हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल ने जो कृतियां बनाई उनके अलावा 42 श्लोक, एक नवरत्न मालिका, 4 राग मालिकाएं, 39 संस्कृत बंदिशें, ये सब भी उन्होंने बनाई। एक बंदिश तो कन्नड़ा भाषा में भी है और एक है मलयालम में। एक और है मणिप्रवालम, अर्थात अनेक भाषाओं के मिश्रण से भी बनाए हैं। इतना सब उन्होंने 34 वर्ष की आयु में ही बना ली थी। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ धनाश्री राग में एक ध्रुपद शैली में बनाई हुई कृति। धनाश्री राग भीमपलाश से मिलता जुलता है और स्वर दोनों में एक ही जैसे लगते हैं। तो सुनिए शीस गंग, स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृति।

ये थी धनाश्री राग में महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक ध्रुपद शैली की बंदिश। धनाश्री राग ज्यादातर भीमपलास राग से मिलता जुलता है। अब सुनिए एक फिल्म संगीत जो राग भीमपलास के स्वरों पर आधारित है।

0: राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत था, फिल्म राम राज्य से, आवाज थी सरस्वती राणे की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
1: मुरली की धुन सुन आई दाते जमुना के तट पर, जमुना के तट पर निरत करत उत हिरत फिरत उत हिरत फिरत ऐसे चंद्र तपन दिग्धि राम तत राम तत राम तत।

लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नगिन देश दे सगन लगाना कित झट झट झट झट नच सक सगन का सगन का कित झट झट सगन का जी सगन लगा साधा कित झट सगन का साधन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा राधैया राधैया राधैया राधैया।

हातिम ताई फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाजों में ये गाना राजा मेहंदी अली खान का की बोल थे और एस एन त्रिपाठी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।
4: विकट

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: था जो

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे फंटूज फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

रंगीन रातें फिल्म से आप अभी सुन रहे थे शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाज में ये गाना, केदार शर्मा के बोल, रोशन का संगीत। इसी के साथ आज काबूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2000

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आप सबका स्वागत है हम है राही प्यार के कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आग फिल्म के इस गाने के साथ, महेंद्र कपूर और आशा भोसले के आवाज में, असद भोपाली के बोल और संगीत है उषा खन्ना का।

कराही। इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। ए इरशाद के बोल थे और संगीत किशोर कुमार का।

सावन झूम के इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम के बाकी गाने कुछ इस अंतराल के बाद।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं हम राही प्यार के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला गाना हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति औरत फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में शकील बदायूनी।

0: हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा।

0: सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी है मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की

0: पूर्णता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी

0: सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे के 8:15 हैं और इस समय आप सुनते हैं आपका पसंदीदा फिल्म संगीत। लीजिए साथियों, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं भूत बंगला फिल्म के इस गाने के साथ। इसमें आवाजें हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की, कुमार की शब्द रचना है और संगीत है प्रीतम का। तो आइए ना आप और हम मिलकर सुनते हैं।

आपका पसंदीदा राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत सुनिए ना हर बुधवार सुबह 10 बजे जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ ओनली ऑन FM सन सिटी

मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है, ये दिल की धड़कनें पहले ही महसूस कर लेती है। FM Sun City पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा फिल्म संगीत। गाने वो जो आपके सीने में धड़कते हैं, कभी अकेले में बैठकर सुनना चाहते हैं तो कभी अपनों के साथ मिल बैठकर सुनते हैं। ऐसे ही गाने FM Sun City पर हमेशा आपके लिए प्ले होते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक पायदान और आगे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल मिश्रा की आवाज़ में धड़क टू फिल्म का गीत। रश्मि विराग की ये शब्द रचना है और संगीत है जावेद मोहसिन का। आइए ना आप और हम मिलकर सुनते हैं।

कैसी ये धड़क है तेरी और मेरी प्रेम कहानी में एक छोटा सा अल्प विराम चाहिए। धड़क 2 फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है।

साथियों, आपका और दूसरों का जीवन अमूल्य है, इसे दुर्घटना की भेंट ना चढ़ने दें। इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। याद रखिए, कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाएं। वाहन चलाने से पहले हमेशा याद रखें कि घर पर भी आपका कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए कभी भी उल्टा सीधा ओवरटेक ना करें। ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज़ पर सवेरे के 8:30 बजे हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार।

आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां यह नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए।

0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार।
1: बिल्कुल श्रोताओं, 27 मई का आज दिन है और आज के इस अंक के साथ हाजिर है हम सभी। तो कार्यक्रम नमस्कार में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, लेकिन पहले आपको करवाते हैं हमारी टीम से परिचय। ट्रांसमीटर से हमारा साथ दे रहे हैं नरेंद्र सिंह राठौड़ और प्रकाश पंवार।
0: कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं विक्रम सिंह भाटी।
1: अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ है आकांक्षा वैष्णव।
0: और एफएम पर हमारे साथ है उद्घोषक बलवीर सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर है संजय व्यास।
0: कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश नामरोड़ ने।
1: और इन सभी के साथ मैं सूफिया खान
0: और मैं मीता मुल्तानी।
1: और इसी के साथ श्रोताओं, गीत नए नए वेले के तहत सुनते हैं ये पहला गीत।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

मित्रों, जब सब्र का इम्तिहान हो तो सफलता अचानक नहीं बल्कि अपनी पूरी तैयारी के साथ मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपको सुनाती हूँ एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक दिन दोनों के बीच शर्त लगी कि अगले 6 वर्षों में कौन सबसे ज्यादा फसल उगाकर कमाएगा। पहले किसान ने जैसे ही बीज बोए कुछ ही हफ्तों में फसल लहलहाने लगी। वह एक साल में दो दो फसलें उगाने लगा। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करने लगे। दूसरा किसान, उसने बीज बोए लेकिन महीनों तक खेत में कोई हरियाली नहीं आई। उसने फिर से मेहनत की, पानी दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं उगा। अब धीरे धीरे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल भी मित्रों यही हुआ। पहले किसान के खेत में फसलें कटती रहीं लेकिन दूसरे किसान के खेत में केवल सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा रहा। 4 साल बीत गए लेकिन दूसरे किसान ने हार नहीं मानी। वह लगातार खेत की देखभाल करता रहा। 5वें साल ऐसा हुआ कि खेत से छोटे छोटे पौधे बाहर आए और जब 6ठा साल आया तो खेत में 100-100 फीट ऊंचे बांस के पेड़ खड़े हुए। असल में दूसरे किसान ने जो बीज बोए थे श्रोताओं, वे चाइनीज बांस के बीज थे। शुरुआती वर्षों में वह पौधा अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था लेकिन जब उसने 6ठे साल अपनी फसल बेची तो उसने पहले किसान से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी हमें अपनी जड़ें मजबूत करने में समय लगता है लेकिन आप परिणाम की चिंता नहीं करें। जब आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो लोगों की बातों में न आए अपना काम करते रहना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम धैर्य और निरंतरता के साथ कार्य करें तो की गई मेहनत का परिणाम हमेशा शानदार होता है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती मित्रों।

श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन सी गीत के बाद। और श्रोताओं हम बात कर रहे थे कि हार जो है वो हमें ये सिखाती है कि जीतना कितना ज़रूरी है, और जीत तभी मिलेगी श्रोताओं जब छोटी छोटी गलतियां जो हैं हम करेंगे, क्योंकि गलतियां हमें काफ़ी कुछ सिखाती है।

सुन रहे हैं गाने नए नवेले, और इन नए नवेले गानों के साथ हम ये बात करें कि हमारे जीवन में कौन सी बातें ऐसी होनी चाहिए जिनका ध्यान रखते हुए हम हमेशा खुश रह सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो चार बातें मुख्य रूप से हमेशा ध्यान रखें। पहली बात, अपनी चीजों से संतुष्ट रहें, क्योंकि संतुष्टि जीवन में हमेशा इंसान को संतोष और सुख का आभास कराती है। दूसरी, स्वतंत्रता के साथ जिएं, तो हमेशा अपने आप को आप खुला खुला महसूस करोगे। तीसरी, परिवार के करीब रहें, ताकि परिवार में साथ रहकर जो सुख प्राप्त हमें मिलता है वह सबसे सच्चा सुख है। और चौथी, अच्छे लोगों से मित्रता करें। यदि हमारे मित्र अच्छे होंगे तो वह हमें सही राय देंगे, हमें हमेशा मोटिवेट करेंगे। और इन चार बातों के साथ श्रोताओं

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरण जीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

हमारा कंफर्ट जोन जो बन जाता है. लेकिन दोस्तों अगर कंफर्ट जोन में रहकर कभी हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती और जब हम इस आराम से निकलेंगे तभी तो छू पाएंगे ऊंचाइयों को. यानी कंफर्ट जोन से निकलना जो है वो बेहद ज़रूरी है. याद कीजिए अपने बचपन को जब हमने साइकिल चलाना सीखा था. लगता था उस टाइम कि अब नहीं चला पाएंगे क्योंकि बार बार गिर जो जाते थे. लेकिन जब बैलेंस बना तो ऐसा बना कि सब कुछ सीख गए वो भी फटाफट से. इसीलिए खुद की सोच का बदलाव ज़रूरी है. अगर हम डर का सोच कर कुछ नहीं करेंगे तो लाइफ में कभी भी चेंज नहीं आएगा. इसीलिए हमेशा अपने डर को दूर भगाना ज़रूरी है.

श्रोताओं, जैसा अभी हमने सुना कि मितवा, तो ये जो मीठी वाणी है, प्रेम से बढ़कर हम कहते हैं कि क्या है, तो प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते अच्छे बनाइए, मधुर बनाइए, अपने अच्छे दोस्त बनाइए। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही हम दूसरों का मीठा मुंह कर सकते हैं। अगर आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं, तो हमेशा मीठी वाणी बोलिए।

और श्रोताओं, अब 9 बजने वाले हैं और हम रुकेंगे एक न्यूज ब्रेक के लिए और 9:10 पर फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम नमस्कार लेकर।

0: कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉ शमिका रवि को सदस्य नियुक्त किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक

0: और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी।
1: देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के दूसरे और तीसरे चरण के लिए करीब 688 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। इससे जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कामों को गति मिलेगी। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के लिए इससे पहले भी 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश भर में जल संरक्षण और जल ग्रहण विकास से जुड़े कामों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम और अन्य जन जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। कल कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, पाली, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में हुए कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया गया। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। रीको और नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले प्लांट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में रिसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है। नई योजना के तहत लगने वाले प्लांट से जल का पुनर्उपयोग हो सकेगा। योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को इसका कारण बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीधे तौर पर मौत का कारण बताया है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई निष्कर्ष प्रमाणित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने विभिन्न दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के 37 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। श्री खेवसर ने बताया कि अब तक मिली रिपोर्ट्स में सभी दवाएं मानक गुणवत्ता वाली पाई गई हैं।
2: ये जो प्रसूताओं की जो डेथ हुई है वो इस इंजेक्शन के कारण नहीं हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं था। अभी जो है इक्विपमेंट्स की जो है कोलकाता से रिपोर्ट आएगी, हमें मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कमी रही है और उसको हमारे पास रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी तो हम इसके बारे में बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस ये जो प्रसूताओं की डेथ हुई है उसको बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने लिया है और वो पर्सनली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जांच होके जो एक्चुअल कारण है उसके बारे में हमें मालूम पड़ेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। ये जोन जवाहर नगर में बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने जगह चिन्हित कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि शहर में रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए 27 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन जोनों में बिना किसी गारंटी के आसान ऋण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे 5,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि योगासन को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि साल 2036 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाएगी। डॉ. मांडविया ने बताया कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। 4 से 8 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा।
3: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में

0: आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
1: प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जा रहा है। कल 5 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। उधर कोटा में रात का तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कई दिनों से अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। वहीं कुछ जिलों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं।
2: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मौसम विभाग के अनुसार कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस बीच झुंझुनू में कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को कुछ देर तेज बारिश हुई। ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। ये त्योहार कुर्बानी और त्याग का प्रतीक माना जाता है। हर साल ये पर्व इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हज की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह और अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाएगी। इस बीच हज यात्रा 2026 में भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के अराफात मैदान में इकट्ठा हुए। एहराम पहने अकीदतमंदों ने निमरा मस्जिद में एक साथ नमाज अदा की। जायरीन आज कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने की रस्म के लिए मीना पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में किसी तरह का सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बोर्ड ने कहा कि ये मार्किंग प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और अब जानते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों है खास।
4: श्रोताओं, वर्ष 1937 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज को पहली बार पैदल यात्रियों के लिए खोला गया था आज ही के दिन।
3: साल 1951 की श्रोताओं, आज के दिन भारत के मुंबई में देश के सबसे प्रसिद्ध एक्वेरियमों में से एक तारा पूर्वाला एक्वेरियम का उद्घाटन हुआ था। समय के साथ इसमें काफी परिवर्तन भी किए गए और इसके नवीनीकरण के बाद आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से 3 मार्च को खोला गया 2015 में और बाद में नई प्रजातियों के साथ अप्रैल 2025 में भी इसको खोला गया।
4: श्रोताओं, वर्ष 2010 और दिन था आज का यानी 27 मई को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में बालासोर जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है मित्रों, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात काम की बात। श्रोताओं, अक्सर हम खाना खाने के बाद जो हैं वो ज़्यादातर बेड पर बैठकर फ़ोन में मशगूल हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं और फिर शुरू होता है पेट में गैस का काम और वज़न भी तो हमारा बढ़ ही जाता है। तो एक काम जो इन दोनों से हमको राहत दिलाए वो है भोजन करने के बाद वॉक। हमेशा से शरीर के लिए फायदेमंद बताई गई है ये वॉक जो है श्रोताओं, वो कैलोरी बर्न करके वजन बढ़ाने से हमको बचाती है और कई बीमारियों से भी बचाती है। इसके और फायदों की अगर हम बात करें तो पाचन हमारा बेहतर होता है, बॉडी का मूवमेंट होने पर आंतों में जो खाने का मूवमेंट होता है वो तेज हो जाता है जिससे खाना जल्दी और आसानी से पचता है।
2: साथ ही श्रोताओं, खाना खाने के बाद वॉक या बॉडी में मूवमेंट होने पर ब्लड शुगर का खतरा कम हो जाता है और हृदय रोगों का खतरा ये भी घटाने का ही काम करती है मॉर्निंग खाना खाने के बाद वॉक। अब इसमें श्रोताओं कुछ बातों का ध्यान भी जरूरी है, जैसे खाना खाने के बाद कभी भी तेज नहीं दौड़ना चाहिए या ज़्यादा तेजी से ना चलें, हमेशा सामान्य या हल्की गति से टहलें। भोजन के तुरंत बाद के बजाय 10-15 मिनट बाद आप टहलना शुरू करें। तो जब भी खाना खा लें उसके बाद वॉक जरूर करें, सेहत भी बनी रहेगी और मूड भी फ्रेश रहेगा। तो साथ ही मूड को और अच्छा करते हैं ये प्यारा सा गीत सुनकर।

0: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आज अब हम बात करते हैं कुछ खास। तो आज की खास बात हम कर रहे हैं मारवाड़ का महाकुंभ कहे जाने वाले भोगीशैल परिक्रमा की। श्रोताओं, जोधपुर की भोगीशैल परिक्रमा मारवाड़ की एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आस्था यात्रा है। यह करीब 100 साल पुरानी परंपरा है जिसमें श्रद्धालु भीषण गर्मी, जो अभी नौतपा भी चल रहा है, उसमें भी लगभग 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इस वर्ष यह 25 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। 7 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा में श्रद्धालु दुर्गम पहाड़ियों और कठिन रास्तों से गुजरते हुए कुल 11 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हैं। दोस्तों, इस दौरान भक्त जोधपुर के 50 से अधिक प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का शुभारंभ शहर के ऐतिहासिक घंटाघर पर ध्वज पूजन के साथ होता है और उसके बाद पड़ाव आगे से आगे बढ़ता रहता है। इस यात्रा में आम श्रद्धालुओं के साथ साथ जोधपुर राज परिवार के सदस्य भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं और श्रद्धालुओं का जो सेवा करने वाले लोग हैं वो भी पूरे तन मन धन से सेवा करते हैं।
1: और ये जो मारवाड़ की कुंभ के रूप में प्रसिद्ध भोगीशैल परिक्रमा है, श्रोताओं, उसका जो आज का पड़ाव है वो सुबह 4 बजे से रवाना होकर चौपासनी से रवाना होकर दंताल माताजी मंदिर, श्रीजी बैठक, अरना झरना, भद्रेशिया महादेव मंदिर और कदमकंडी होते हुए बरली भैरव जी मंदिर पड़ाव स्थल पहुंचेगी। और श्रोताओं, परिक्रमा मार्ग पर संस्थाओं ने जो है वो श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार, चाय, फलाहार, चिकित्सा और पेयजल की व्यवस्थाएं भी की है।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतिया रे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए।

0: सतर्क रहिए।
1: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: दोस्तों, आज बुधवार है और आज के हमारे सेगमेंट इतिहास में हम बात करते हैं किसी एक ऐतिहासिक जगह के बारे में। और आज हम बात करेंगे धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की ऐसी जगह जिसे दुनिया परियों का निवास भी कहती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज हम बात करेंगे परी महल की, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जबरवान पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित एक 7 मंजिला सीढ़ीदार मुगल गार्डन है। इसका निर्माण लगभग 1650 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने करवाया था।
1: और दारा शिकोह ने इसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष की पढ़ाई के लिए

0: केंद्र के रूप में जो है वो विकसित किया था। और यहाँ की जो मेहराबदार दीवारें हैं श्रोताओं, और सुंदर बगीचे हैं, प्राचीन पत्थर के नक्काशीदार गलियारे इसकी जो ऐतिहासिक भव्यता है उसको काफ़ी अच्छा दर्शाते हैं। और यहाँ की जो ऊंचाई है वहाँ से डल झील और श्रीनगर शहर का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। और बर्फबारी के दिनों की बात करें तो उस टाइम पे तो ये पूरा महल जो है और इसके बगीचे पूरे सफ़ेद चादर से ढक जाते हैं, और जो इसे किसी परियों की कहानी जैसा रूप देते हैं। ये काफी मनोरम दृश्य होता है उस वक्त।
1: साथ ही इस महल की वास्तुकला भी बड़ी अनोखी है। सीढ़ीदार बगीचों में विभाजित इस महल में पानी पहुंचाने के लिए एक जटिल हाइड्रोलिक प्रणाली का पुराने समय में उपयोग किया जाता था, और यहाँ की दीवारों को मेहराबों से सजाया गया है। तो श्रोताओं, डल झील और पूरे श्रीनगर शहर का एक शानदार और शांत दृश्य प्रस्तुत करता है यह पर्यटन स्थल। तो आप भी जरूर परी महल का नजारा देखने के लिए कश्मीर हो आइए इन गर्मी की छुट्टियों में।

0: और श्रोताओं, आज जयंती के दिन पर हम याद कर रहे हैं जाने माने मलयाली कवि और गीतकार ONV कुरु को। श्रोताओं, 27 मई 1931 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और इन्हें साल 1979 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। गीतकार के रूप में इन्हें 13 बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके 20 कविता संग्रह भी है, आलोचना की किताब, बाल साहित्य पर किताब और कार्ल मार्क्स की कविताओं का अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है और साल 2007 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। 1998 में पद्मश्री, साल 2011 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और श्रोताओं, 13 फरवरी 2016 को इनका निधन हो गया था।
1: श्रोताओं, साथी, आज हम याद कर रहे हैं मराठी लेखक, उपन्यासकार, कवि, शिक्षाविद भालचंद्र नेमाड़े को। 27 मई 1938 को जन्मे भालचंद्र नेमाड़े के उपन्यास काफी चर्चित रहे थे, जिसमें हिंदू, झूल, कोसला हैं। इसके अलावा उनके कहानी संग्रह, कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए। साल 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। साल 2011 में पद्मश्री, साल 1990 में टीका स्वयंवर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच

में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: श्रोताओं, भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा नाम जिन्होंने खिलाड़ी, कैप्टन और कमेंटेटर के रूप में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बात कर रहे हैं आज हम रवि शास्त्री जी की, जिनका आज जन्मदिवस है। 27 मई 1962 को जन्मे रवि शास्त्री अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।
1: और साल 1981 में श्रोताओं, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। और सबसे सुनहरा पल रहा 1985 का, उसमें बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट उस टाइम था। इसमें बल्ले और गेंद दोनों से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 80 टेस्ट मैचों में 11 शतकों और 12 अर्धशतकों की मदद से 3,830 रन बनाए, 151 विकेट लिए। 1992 में घुटने की चोट के कारण क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कहा और बाद में कमेंट्री में कदम रखा और अपनी दमदार आवाज, खेल की गहरी समझ से फैंस का दिल उन्होंने जीत लिया।
0: वर्ष 1985 में रणजी ट्रॉफी के एक मैच में बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का अद्भुत कारनामा भी किया था। वर्ष 2017 से 2021 तक वे भारतीय टीम के हेड कोच रहे, जिसके दौरान भारत ने कई ऐतिहासिक सीरीज जीती। और संन्यास के बाद उन्होंने लोकप्रिय और दमदार कमेंटेटर के रूप में दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज उनके जन्मदिन पर हम पूरे आकाशवाणी टीम की ओर से

0: श्रोताओं, आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ था और 14 नवंबर 1879 को उनके जन्मदिवस को, श्रोताओं जैसा कि आप जानते ही हैं, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की अगर हम बात करें तो साल 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। 1916 में एनी बेसेंट की होम रूल लीग में भी वो शामिल हुए थे। 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था उन्हें और साल 1927 तक दो बार कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1936 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। साल 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
1: श्रोताओं, उन्होंने इसमें भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने के अलावा उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना को पूरा करके भारत के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को उनकी वैश्विक उपलब्धि माना जाता है। उनके द्वारा लिखी किताबें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक आत्मकथा, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर है।
0: और श्रोताओं, आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं भारतीय सेना के साहसी और जाबाज सैनिक हंगपन दादा को, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, साल 1997 में सेना की पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हुए थे। बाद में असम रेजिमेंट और जम्मू कश्मीर में तैनात 35 राष्ट्रीय राइफल में भी अपनी सेवाएं दी और 27 मई 2016 को देश के लिए अपने प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिए।
1: साथ ही आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं मराठी लेखकों में से एक और संस्कृतवादी जाने माने विचारक लक्ष्मण शास्त्री जोशी की। उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन हिंदू शास्त्रों और आधुनिक दर्शन का पूरा ज्ञान था। वर्ष 1923 में उन्हें कलकत्ता के संस्कृत महाविद्यालय में तर्क तीर्थ की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। साल 1955 में उन्हें उनकी कृति वैदिक संस्कृति का विकास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साल 1992 में पद्म विभूषण, 1976 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कृतियां आनंद मीमांसा, साहित्य की समीक्षा मुख्य है।

0: और इसी के साथ श्रोताओं नमस्कार कार्यक्रम के आज के इस अंग से दीजिए इजाजत मुझे यानी सूफिया खान
1: और मुझे मीता मुल्तानी को
0: और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तेज धमक तो तावड़ो चमके जाने साण, ले ले रगड़ता आवता लूआ लेवे प्राण, लूआ लेवे प्राण।
2: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।

0: ये FM सन सिटी चैनल है, लीजिए सुनिए मायर भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

लप लप कर तो अब जगे धरती रो तंदूर, लप लप कर तो अब जगे धरती रो तंदूर, कर कर रोटी आकरी लूरा घेरे दूर, लूरा घेरे दूर। देखो भाया कि इन दिना में गर्मी हागेड़ी पड़ रही है, करड़ो तावड़ो पड़ रही है, नलुआ बाज रही है, और भाया लाड़ला कई दिनासु तापमान में दिनों दिन बदोतरी भेरी है। इनसु गरम हवारा झपीड़ उठ रिया है, मिनक बेहाल वेगो है, और मान को कहवे है कि हाय राम अब काई वेला, एड़ी तेज गर्मी पड़े है, हागेड़ो तावड़ो पड़े है, हे भगवान काई वेला। सूरज भगवान तो जाने कोप कर रिया है, लागे है कि भगवान शंकर रो तीजो नैन खुल गयो है, यूं लागे है कि ओजोन परत में ठिंडो वेगो है। एसी कूलर में रेवन वालो आज रो आराम दे मान खो, इन गर्मी ने तो सहन ही नहीं कर पा रियो है, पण भाया इन धोरा धरती माथे आ गर्मी भी जरूरी है। लाड़ला कई दिनासु आपा घनी गर्मी सहन कर रिया हां, अपने तन माते महसूस कर रिया हां, और भाया अबार की दिनासु पहला जकी आपे गर्मी सहन करी, ए जी का दिन बीतिया वे तो सहज हा सरल हा। ज्यों त्यों करने जको आ गर्मी आपे सहन कर ली, पण भाया अबे जका ए दिन है और जका आगे रा दिन आवेला, इन दिना में गर्मी हागेड़ी पड़ेला, तेज तावड़ो पड़ेला, तापमान में और बदोतरी वेला, क्योंकि भया नौ तपारा दिन शुरू वेगा है, जको 25 मई से शुरू विया और यूं तो अपने अठे 8 जून तक रहेला पूरे 15 दिन, पण जका नव तपारा दिन है वे 2 जून तक रहेला और हागेड़ा रगड़ का काढ़ेला।

भया नौ तपा मतलब के रोहिणी नक्षत्र रा शुरुआती नव दिन जका घना तपे है हागेड़ी गर्मी पड़े है इन दिना में ते नौ तपा मई महीना रे अंत में और जून महीना री शुरुआत में आया करे है इन दिना में गर्मी

मेरा सबसू तेज दिन विया करे है ए घर मेरा सबसू भीषण दिन विया करे है और देखो भया के इन बरस विक्रम संवत 2013 सी ने जेठ वदी एकम सु नौ तपा शुरू विया ए नौ दिन 25 मई 2026 सु 2 जून 2026 ताई रेवला गर्मी रही हागेड़ी धरती तपी इन दिना में भया खगोल शास्त्री जगह है उनारे नजरिया सु मई रे अंतिम दिना में सूरज भगवान और पृथ्वी री दूरी कम वे जाया करे है जिन कारण गर्मी घनी तेज वे है भीषण पड़े है और भया ज्योतिष शास्त्र जो को है इनरे मुजब ए नौ तपा में भगवान सूरज रो रथ रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया करे है यूं तो इन रोहिणी नक्षत्र रो स्वामी चंद्रमा है भया पण जद सूरज भगवान रो सप्तांश रथ प्रचंड रूप में आवे तो चंद्रमारी ठंडक भी काम नहीं आवे और तापमान बदे है धरती तपे गरम हवारा झपेड़ उठे और मान खो तो अणुती गर्मी सु बेहाल वे है तो भया भीषण गर्मी रा दिन नौ तपारे रंग सु रंगेड़ो है और साथ ही लोक संगीत सु सजेड़ो है आप रो मन मोवणो हिवड़े बसियो मायड़ भाषा ने समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत कार्यक्रम रो आज रो नुवो अंक लेर हाजर होयो हूँ मैं इन संगीतमय रथ रो सारथी और आप रो दीवानो दोस्त बलवीर मैं हूँ छोरो जोधपुर रो आप सगड़ा हितालु श्रोताओं ने शेर का साइनों ने नया नवेलों ने और बड़ा बडेरा ने मारा राम राम और देखो भाया की गर्मी हागेड़ी पड़ रही है और जद घर्री धनियाणी जब बाहर निकले तो इन गर्मी सु झुलस जाया करे है तन ने घणो जो को है ओ तावड़ो हागेड़ो जो को है बाहर दिया करे है तो एड़ी झुलसती गर्मी रे माए जब घर धनियाणी ओड़बो देवे आप रे घर धनी ने तो किन भात देवे आओ आपे मिल रे सुना और भया बढ़िया रहो एफएम सन सिटी माते सुनते रहो मरुधरारा गीत जोधपुर छोरे बलवीर रे साथे

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: शालीनता है जिसकी शान,
3: यहाँ पे सब शांति शांति है।
2: सौम्यता है इसकी पहचान।

0: FM Sun City, Sun City, Sun City.
1: FM Sun City पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह.
2: FM Sun City रे इन आंगने इन बखत आप सुन रिया हो मायड़ भाषा री ओळखाण कराव तो मायड़ भाषा जन जन ताई पुगाव तो लोक रंजन रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरा रागी. आज कार्यक्रम में बात कर रिया हां नौ तपारी जद भाया गर्मी हागेड़ी पड़े है धरती तपे आबो बड़े नौ तपेर यहाँ पे बात कर भाया पण उनसु पहला करा आपरो स्वागत नंदन वंदन अभिनंदन हमेशी भात मारे अंदाज में. पलका बुहारू पंत थाणो हेवड़े राखूं गोए पलका बुहारू पंत थाणो हेवड़े राखूं गोए आवो सा मारे आंगणे थाण बिना कुण होए थाण बिना कुण होए. और देखो कि आपने बधाने लेवा ढोल थाळी रे साथे आपने मायड़ भूमरी परंपरा है इन परंपरा ने एफएम सन सिटी हमेशा निभाया करे है. आप रो तिलक करने स्वागत करा आपने फेटो पैरा आप रो स्वागत करा एफएम सन सिटी रे आंगणी आपने बधान लेवा

और भाया आप सगला ने ठा है कि आ ढोल थाली जब एफएम सन सिटी माते बाजे तो आ अपने एफएम सन सिटी री जकी नारी शक्ति है नारी रतन है उनारे वास्ते भी व्याह करे है क्योंकि वे जर घर में जठे भी वे चाहे वे झाड़ू कटको करे बासण बर्तन करे बड़ा बुजुर्गारी सेवा करे या कोई दूजो काम करे या पछे आपरे रसोई में भोजनशाला में भोजन पकावे जठे भी वे थोड़ी एक जेज इन ढोल थाली माते घूमर घालिया करे है तो थोड़ी एक जेज आप घूमर घाल लो और आप साथे मैं भी मने जो ठुमका लगाउनी आवे लगाई लूं मैं भी ठुमका आपरे साथे देखो कि इन ढोल थाली रे माथे माने एफएम सन सिटी रे स्टूडियो में भी दो नारी रतन सोफिया और मीता ए दोनों जगह है घूमर घाल रिया है

देखो कि इन ढोल थाली माते तो घूमर कम पड़ नहीं चाहिए जाए पर अब कई करा कार्यक्रम ने भी धक्के बधावनो है तो बना कार्यक्रम ने धक्के। देखो भया कि नौ तपारा दिन आज री नई पीढ़ी ने सहन कम वे है क्योंकि भया आज री पीढ़ी तो कूलर में रहवे है एसी में रहवे है। रोहिणी नक्षत्र में नौ तपा रह करे है पर बढ़ेरा कहवे है भया कि जब नौ तपा में जितनी अणूती गर्मी पड़े उत्तो ही जमानो आछो वे है। नौ तपासू सांगो पांग जमाने री साक बधिया करे है। मॉनसून केड़ो रहवेला ए इन नौ तपारे दिनी ठा पड़े है ए दिनी बताए दिया करे है आपने। नौ तपा में गर्मी हागेड़ी पड़ेला गजबरी रेवेला तो बड़ेरा कहवे है भया कि बिरखा रानी भी घनी मेहरबान वेला। और देखो भया कि रोहिणी नक्षत्र रे पछे मृगशिरा नक्षत्र आया करे है जिनरो कार्यकाल भी 15 दिनारो विया करे है। और लोक मत कहवे है भया कि मृगशिरा नक्षत्र में आंध्यारे साथ है तेज हवा चालनी जरूरी वे जिनसु रोहन सु तपियोड़ो समंदर सावटो मॉनसून तैयार करे है। और साथ ही बिरखा रुतरी कई बाधावारो हरण करिया करे है इनने लोक भाषा में वाइया कहया करे है। और कहवत भी है अपन अठे कि वाइया तो वाजिया ही भला। इन बाबत लोक जीवन में एक दुओ है कि दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताव दोरी बांधी जड़ हरे दो विषधर दो भाव। मतलब के भया मृगशिरा नक्ष

क्षेत्र रे शुरू रे दो दिन में जे हवा आंधी नहीं चाले तो वर्षाली री ऋत में ऊंदरा घना पैदा वेला जका किसान भाई ने दुख दिया करे है और कूटियोड़ो सिट्टा जिका है वे बिला में ले जाया करे है। इनरे अगले दो दिन में यानी कि तीजे और चौथे दिन जद हवा नहीं चाले तो लट है कीट है कातरा रो प्रकोप जो को है वो घणो बद जाया करे है और फसला ने नुकसान पुगाया करे है। उनरे अगला दो दिन में यानी कि पांचवे और छठवे दिन जे हवा और आंधी नहीं चाले वृक्षिरा नक्षत्र में तो वर्षाले में टिड्डी दल रो जो को है घणो चाड़ो वे है और फसला ने वे चौपट कर दिया करे है। और भया उनरे अगले दो दिन में यानी कि सातवें और आठवें दिन जे हवा और आंधी नहीं चाले तो वर्षाले में ताव तपाली बुखारी बीमारी जकी है ए बीमारियां इन तरह की वे फैल जाया करे है। उनरे अगले दो दिन में यानी कि नवे और दसवें दिन जे हवा और आंधी नहीं चाले तो मेह कम बरसेला और पानी रो घाटो अपने सहनो पड़ेला। उनरे अगले दो दिन में यानी कि ग्यारहवे और बारहवें दिन मृगशिरा नक्षत्र रे जे हवा और आंधी नहीं चाले तो बरसाले री ऋत में सांप बिच्छू जड़ा विषैला जीव जका है उनारो घणो चावो रहवेला क्योंकि वे बिलसू बारे आ जाया करे है। और इनरे छेले दो दिन में यानी कि तेरहवे और चौदहवे दो दिन में जे हवा नहीं चाले तो आंधिया चालेला वायरो चालेला इनरो छेलो दिन खोड़ियो वायो रो जो को है ओ कई जग रहे जिनमें हवा चाले तो संसार में सुख शांति थरपे है। और ये नौ तपारा दिन में इनमें तो दावड़ो जो को है हागेड़ो पढ़नो चाहिए आज ऊपर वाला से अरदास करा क्योंकि जी का नव तपारा दिन है इन सुज अपने जी को है जमानो कैडो वेला मॉनसून कैडो वेला बिरखा कैडी वेला इंट्रो ठा पड़ जाया करे है। जद गर्मी हागेड़ी पड़ेला तो मॉनसून अपनो जमानो भी घणो चोखो वेला पण जका भाया अबा जी का खेता में किसान भाई काम करे है जिका कम ठामा ते अपना जिका मजदूर भाई काम कर रिया है उन्होंने तो आ गर्मी गजबरी तकलीफ देवे है उन्हें घणी तंग करे है तो उन्हारे वास्ते तो आप अरदास कर ही सका कि तावड़ो धीमो पड़ जाए।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे FM सन सिटी ट्यून कर।
2: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: 102.1 FM सन सिटी जोधपुर शहरी धड़कन जठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। अबार सुन रिया हो मायर भाषारो सजीव रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत जिन्हें आप सुनिया करो हो हर बुधवार दिन सुबह 10 बजे से लेर 11 बजे ताई पूरे एक घंटे आनंद उठाई रिया हो जोधपुर छोरे बलवीर रे साथ है। और आज कार्यक्रम में बात कर रिया हां नौ तपारी जब गर्मी हागेड़ी पड़े धरती तपे आबो बढ़े

देखो भैया की रोहिणी नक्षत्र में नौ तपा राज्य का दिन वे जेठ और आषाढ़ 15 दिन में भी गर्मी पड़िया करे है। रोहिणी नक्षत्र रे पछे मृगशिरा नक्षत्र आया करे है। इनरी बात आपा करी ही थोड़ी एक जेज पहला आपे करी ही। और देखो भया की मृगशिरा नक्षत्र रे पछे आद्रा नक्षत्र पड़िया करे है। और जद रोहिणी और मृगशिरा रो तालमेल सही बैठ जावे, मेल साव तो ढुक जावे, तो आद्रा नक्षत्र में मेह घणो बढ़ से है। और आद्रा रो मेह तो मोती पैदा करे है भया, मोती। बड़ेरा कहवे है कि रोहण तपे मृगशिरा बाजे, तो आद्रा अणचीतिया गाजे। देखो भया कि कुदरत रो रौद्र रूप जो को आपा इन नौ तपा में देख रिया हाँ, इन दिना में लोग बेलू जी की रेत है उन रे माए पापड़ सेक लिया करे है, बाटिया सेक लिया करे है, तो कोई कोई तो पानी उकाड़ लिया करे है। और देखो भया कि पूरे साल री तेज गर्मी इन दिना में पड़े है। और इन मौसम री आज की है जायज गर्मी है, तापमान तो 50 डिग्री तक पूग जाया करे है। और एड़े तापमान में भी

પણ જેસલમેર બાડમેર બિકાનેર બોર્ડર માતે જેકા હૈ આપણા જવાન આપણા જેકા દેશ રા જેકા સીપે સલાર હૈ જેકા ફૌજી ભાઈ હૈ એડી તપતી લાઈ મે ભી દેશ રી રક્ષા ખાતર અડીક ઉભા હૈ પણ ભયા આ ગરમી ઉણાને ની સુહાવે જેકા એસી કુલર મે રે જેકા બંધ કમરા મે રહેવે હૈ જ્યું કે मैं अबार स्टूडियो में बैठा हूँ सजीव कार्यक्रम आप तक उगाई दियो हूँ बंद स्टूडियो है एसी चाल रही है और जब बाहरे जाऊंगा तो तेज धमक तो तावड़ो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा जिन भात अपना किसान भाई है जिन भात अपने कमठा रा काम करने वाला मजदूर भाई है जिन भात अपने देश रे सरहद माते उभा अपना फौजी भाई है उन्होंने भात जो है आ गर्मी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा मारा जरा कई जगह लोग है वह सहन नहीं कर पावे पर भया आ तेज गर्मी रा ए लुवारा जी का झपेटा है ए दोपहर में खाने में काम करने वाला पत्थर तोड़न वाला उन्होंने तो हिला ही नहीं सके है उन्होंने तोड़ नहीं सके है और ए अंगार उगलता लूरा झपेड़ा उन कर्मशील कामनी ने नहीं लागे है जिको उनरे काम ने नहीं डिगाई सके है उनरे निश्चय ने नहीं डिगाई सके है जिको तेज तपते तावने में भी आपने नैना गीला ने खावा माते बांध रहे वो जो ढोवे है कि नहीं भाया तो भाया ए नौ तपारा दिन तो सगड़ा रे वास्ते जमाने रे वास्ते मानसून वास्ते घना फायदेमंद है पण जका इन तरह री नारी रत्न जद काम करे तो उन्होंने वास्ते तो ऊपर वाले से अरदास करा धीमो पड़ जा पर अबार तो देखो कि एक फ्यूजन वालो लोक गीत आप ती पुगाई रही हूँ तहावड़ो पड़े है किन भात पड़े है आप ती पुगाई रही हूँ बस बढ़िया रहो एफएम सनसिटी माते सुनता रहो जोधपुर छोरे बलवीर ने

0: अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तू?
1: अरे जा कहाँ रही हो, सवारियाँ छोड़ के आ रही हो?
0: तो इंजन बंद कर, गाना बहुत बढ़िया आ रहा है।
2: FM Sun City पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: 102.1 FM Sun City आप रो अपना रेडियो चैनल जिन्हें ने आप सुनिया करो हो हमेशा सुबह सुलेर रात ताई, क्योंकि अठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। इन बखत आप रे परिवार और मित्र मंडली रे साके बैठ आनंद उठाई रिया हो मायड़ भाषा रे लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत रो। लोक रंजन रे इन कार्यक्रम में आज बात कर रिया हां नौ तपारी। जब गर्मी हागेड़ी पड़े, धरती तपे, आबो बढ़े। देखो भया कि मौसम वैज्ञानिक महाकवि घाग नौ तपा वास्ते लिखियो है कि सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो मूर, परिवा तपे जो जेठरी, उपजे सातो लूर। रोहिणी नक्षत्र में नौ तपा भरपूर तपे और मूल भी तपे और साथ ही जेठ मास री एकम रो दिन गर्म वे तो सातो अनरी घनी पैदावार वे है। पर भया आज रो मानवी, आज रो मान खो रोहिणी दे नौ तपा माथे घणो दुखी वे है। उनने काय ले उनो सोड़ा आना जमाना सु किसान भाइया रे जिया जोन सु। अरे भाया जद रोहण नी तपेला तो मृगशिरा कीकर बाजेला, और जद मृगशिरा रा 15 दिन भाइया सांगो पांग नी बाजेला तो आद्रा नक्षत्र में बिरखा कीकर वेला। लू और गर्मी किसान भाया रे खेता वास्ते घड़ी महताऊ है। लू रे बिना मारवाड़ रो मेवो पीलू जगो है वो कीकर पाकेला। कहवे है भाया कि दुश्मन री कृपा बुरी, भलो सज्जन री त्रास, आडंकर गर्मी वे तद बरसन री आस, तद बरसन री आस। भया दुश्मन री कृपा बैरी री मेहरबानी सु तो सज्जन मिनख री आखरी आदत जिकी है वह कई गुणा फायदेमंद अपने वास्ते होया करे है। इनी भात तन सुलझाउन वाली जिकी गर्मी है और ऊनी अगन सु जिकी लू है इनरे परियाणी तो मानसून जिको है वो चढ़ाई करिया करे है। भया रुत मुजब ही आ प्रकृति, आ कुदरत जकी है, अपनी प्रकृति जकी है आप रो काम कर रही है। जेठ वैशाख में गर्मी नी पड़ेला तो भाया कत पड़ेला, जे गर्मी आथुनी पड़े तो मान को कहवे है कि हे भगवान काहे गर्मी पड़े है, इतनी गर्मी पड़े है कि पसीना लेरा निकल रिया है। और जद सर्दी जकी है हागेड़ी पड़े तो कहवे कि हे भगवान काहे ठार पड़ रही है।

जनी छूटे है और भया जे जीव जिनावर रे भाग रो मैं अथुणो बरस जावे तो हाय तोबा मचाई देवे। कहवे कि मारो तो आसरो चवे है इतनी बिरखा क्यों वे है। भया ओ मिनक तो बिना मारिया बिना जको मरिया स्वर्ग जावे है। स्वर्ग वास्ते भी तो आपने इन जलम में अच्छा काम करना पड़े है और आत्मा ने जको है जीव रो शरीर तजणो पड़े है। तद भया जान आपे पाप और पुण्य री गठरी रे मुजब आपने स्वर्ग मिले। इन धरती री संस्कृति थीर राखण सारू अठे कई ऋषि मुनि जोगेश्वर विया और पंच अग्नि में ताप करिया और जद आज की है आजिया जून मिली ही।

तो भया इन नौ तपा में डरो मथी बस बे हिसाब बिना मतलब बिना काम घर से बाहर निकलो मत आपरे ऑफिस में आपरे कार्य क्षेत्र में बैठा आपरे काम करो नहीं तो घरे हो तो घरे आराम करो आप काम कर काज करता रहो पर बिना काम एड़ी गर्मी में बाहर निकलो मत पर भया घना रंग तो है उन ग्वाल भाई ने जो को कांदा रोटी और अचार कोपड़ी में धर घर से निकले और एड़ी हाय तोबा करती गर्मी रो में जो को है वो आप रो एवर चरावे और इन धरती री गोद में नीले गगन री छाव रे तले आखो तावड़ो आप रे तन माते गाले है और घना रंग है अपन किसान भाइया ने जेका इन गर्मी में इन तन जलावती लुआ रो जो को आप रे तन रे माते उनने झेले है इंदन भगवान इंदर जेका है बिरखारा देवता इंदर भगवान रे भरोसे इन भरी गर्मी रे माए अन उपजाऊ सारू इन जेठ री पावक में आग उगलती गर्मी में खेता में मेहनत करे है किसान भाई तो खुश वे इन नौ तपा में के तपे नव तपा नव दिन होए तो पुन बरखा पूर्ण होए बड़े बढ़त में घेरिया तपे बेकड़ा रेत लाए पेटरी बुरी किरसो जूझे खेत किरसो जूझे बेट आ गर्मी पड़े है सरदार।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना एफएम सन सिटी।
2: एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: एफएम सन सिटी 102.1 एफएम जिन्हें आप ट्यून इन करियो हो आपने मोबाइल और रेडियो सेट माथे और दूर दराज इलाका और सात समंदर पार न्यूज ऑन एआईआर ऐप रे माध्यम से श्रोता सुनिया करे है। श्रोता आपरो मनोरंजन करिया करे है सुबह सु लेर रात ताई क्योंकि अठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। आपरो अपनो रेडियो चैनल एफएम सन सिटी अब आर सुन रिया हो मायड़ भाषा में बात बंतल करतो मायड़ भाषा नुई पीढ़ी री जबान तई लाव तो लोक रंजन रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरा रागी। कार्यक्रम में आज बात कर रही हैं आपे नौ तपारी गर्मी हागेड़ी पड़े आबो तपे देखो भया की बड़ेरा बतावे है कि गर्मी तो पहला भी एडीज पड़ती ही पण की बरसा पहली इन धरती माथे रूख रहा अपने इन जोतहना री धरती माथे मारवाड़ री धरती माथे राजस्थान री धरती माथे रूख रहा दरख्त हा जका अबे कम वेगा है। उन जमाने में वन हा जंगल हा चारू मेर हरियाली ही और अब वन ए जंगल जका है ए तो कम वेगा है हरियाली तो बची कितनी है भया। पुराने टाइम तो झोपड़ा हा लोग उनमें रहता जिनमें गर्मी और उमस कोनी लागती भाया ए तो झोपड़ा जी का है अगे अबे आपने जी का है रिजोर्ट में या पछे ए फाइव स्टार होटल में देखन मिले है ए वो अपन कल्चर तो वटे गयो प्रो है आपे इनने भूल गहा। आपने जोधाने ने नील नगरी ब्लू सिटी कहवता और कहवे भी है हाल भी कहवता क्या कहवे है पण आ इनरी अपने ओ नीलो रंग जो है अपने इन जोधाने री पिचाणी जिनसू सगला घर पुतियोड़ा होता नीलो रंग जो सूरज री किरणा ने अवशोषित कर देवे अबे ओ रंग इक्का दुक्का घरा माती देखन मिले है इन वास्ते मारे जबान सु निकलियो कि ब्लू सिटी कहवता है कहवे तो हाल ही है पण वो जो नीलो रंग है वो अपने जो अठे अबे कम देखन मिले है घरारे माते। अबे सगली चीजा भया आपने कम देखन मिले है पहली आपने जोधाने शहर रो विस्तार 25-30 किलोमीटर रे दायरा में हो और आज 45-50 किलोमीटर में फैलाव है जोधपुर रो और शहर रो विस्तार भी हो जो को जरूरी भी हो पर इन शहर रे विकास और

विस्तार में कितना रूखड़ा काटिया आपा कितनी हरियाली खत्म करी आ सोचन वाली बात है। उन अनुपात में भाया पाछा आपा कितना पौधा रोपिया उन्होंने सींच ने पेड़ बनाया नवी पीढ़ी ने आपे हरियाली वन जंगल सौंपिया आ सोचन वाली बात है। अबे भाया आ जिम्मेदारी तो आपनी है जिन्होंने आपे सही ढंग से नहीं निभा पाया हाँ और आपे लगो लग इन कुदरत रो दोहन करता रिया हाँ। इन कारण आ गर्मी ए नौ तपारा दिन घना कष्टकारी लागे है। मिनक पणो तज मानवी हिड़कियो हुयो हिलाड़ काटे कुदरत को खड़ी अंगड़ो करे उजाड़ ढींगा डूंगर डोलिया माथे चाड़ मशीन खाड़ा कर कर खोतरी जामण रूप मशीन।

माथे चाड़ मशीन खाड़ा कर कर खोतरी जामण रूप जमीन जामण रूप जमीन। तो हरियाली वेणी जरूरी है, सोचने वाली बात है।

देखो भाया कि आपा खुद अपने हाथा सू प्रकृति रे साथे छेड़छाड़ करी हां कुदरत रो अणमाप दोहन करियो हां इन कारणे सगला दुख भोगरिया है गर्मी सतारी है नौ तपारा ए दिन जका है ए अपने जमाने रे वास्ते मानसून वास्ते घना फायदेमंद है पर अपने वास्ते कष्टदायी और असहनीय वेरिया है मौसम मुजब गर्मी पड़ रही है कुदरत आपरो काम कर रही है आपा भी कुदरत री चीजा ने अवेयर ने राखा उन्होंने मूल रूप में राखन री जुगत करा तो आपा कुदरत रे कोप सु बच सका हां और भया अबे आप सगला रो धन्यवाद आभार के आप इन कार्यक्रम ने घणो पसंद करो हो आप रे हिवड़े बसायो हो और आप रे पसंदीदा कार्यक्रम री सूची में सहसु ऊपर राखो हो और आप रे परिवार और मित्र मंडली रे साके बैठने इन कार्यक्रम रो ने सुनिया करो हो अबे देखो कि इन कार्यक्रम रो टाइम अटे पूरो वेगो है चालता चालता ओइज क्यों कि छेड़ मथी कुदरत छटा गहला कर ले गोत छेड़ मथी कुदरत छटा गहला कर ले गोत जेनी चेतियो जीवड़ा तो मरेला बिन मौत अबे जोधपुरे छोरे बलवीर ने दिराओ सीख राम राम सा

0: ये FM Sun City चैनल है। अब पेश है कार्यक्रम रेडियो रेस्टोरेंट।
1: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: FM Sun City पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
1: भाई साहब, जब मैं किचन में कुछ बनाने के लिए एंटर होता हूं तो एक चीज जरूर बनती है और वो बजती है फायर अलार्म्स। लोग कहते हैं कि घर का बना खाना सबसे अच्छा होता है और मैं कहता हूं कि ये खाना तभी अच्छा होता है जब उसे बनाने वाला कोई और हो। आप सुनना शुरू कर चुके हैं FM सनसिटी।

0: का चटपटा मसालेदार रेसिपी शो रेडियो रेस्टोरेंट, जिसमें खाने की खुशबू होती है बातों के जरिए, और भैया जहां हर बात में थोड़ा सा स्वाद है। मैं हूं इस शो का शेफ, आपका दीवाना दोस्त बलवीर। मैं हूं छोरा जोधपुर का, कहता हूं आपको हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग। और भैया जब मैं हूं आपके साथ तो चिल मारो ना यार। अगर आपकी मम्मी कहती है कि बेटा मैंने तो थोड़ा सा नमक डालने को बोला था और तूने तो पूरा समंदर ही उड़ा डाला, और दोस्त लोग कहते हैं कि तू रहने दे भाई, तू तो सब्जियां ऐसे काटता है जैसे किसी से बदला ले रहा हो, थोड़ा रहम कर, तो भैया ये शो आपके लिए ही है। क्या आपके किचन में भी नूडल्स 2 मिनट की जगह 20 मिनट में बनती है, और आप दाल में नमक की जगह प्यार ज्यादा डाल देते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। तो आइए रेडियो रेस्टोरेंट की खिड़की खोलते हैं।
1: खिड़की खोली जरा, जरा पर्दा सरक गया।
0: मैंने जैसे ही खिड़की खोली भैया, तो पता चला कि बाहर तो धूप है, लेकिन चाय के साथ पकौड़ी की फरमाइश आ गई है। मैं ये ऑर्डर पूरा करता हूँ, तब तक आप सुनिए बैक टू बैक गाने और एक नई रेसिपी और नई कहानी के साथ मैं लौटूंगा आपके साथ। तो बस चिपके रहिए अपने रेडियो सेट के साथ और सुनते रहें FM Sun City जोधपुर के सोरे बलवीर के साथ, ओनली ऑन FM Sun City।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: आप बने हुए हैं FM सनसिटी के साथ।

0: जी हाँ, ये FM सन सिटी है जिसका जादू सर चढ़कर बोलता है।
1: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
0: भाई साहब, मसाले सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बदलते, ये तो बचपन की यादों का पिटारा खोल देते हैं। और साहेब, रेसिपी तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो पूरी फैमिली को एक टेबल पर लाना है। आप सुन रहे हैं फूड लवर का चटपटा मसालेदार शो रेडियो रेस्टोरेंट, आपके दीवाने दोस्त बलवीर के साथ। मैं हूं छोरा जोधपुर का। और भैया, जब मैं हूं आपके साथ तो चिल मारो ना यार। साहिबान, अमूमन हमारे यहाँ पर खुशी में, त्योहार पर या फिर गेस्ट जब घर पर आते हैं तब कोई स्पेशल डिश बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान गुस्से में होता है तब रसोई में क्या पकता है? नहीं पता ना? जी हाँ जनाब, आज मैं बात करूंगा दुनिया की सबसे खतरनाक रेसिपी की, जो कोई शेफ नहीं बनाता फाइव स्टार होटल में, ये तो घर में बनती है जब मम्मी जी गुस्से में होती है या फिर श्रीमती जी क्रोधित हो उठे तब बनती है। और अगर आपका रूम पार्टनर एंग्री यंग मैन बन जाए

तो ये घर में बनती है, यानी गुस्से में बनने वाली रेसिपी एंगर स्पेशल डिश। उनके दिल में गुस्सा हो और हाथों में बेलन हो तब ये व्यंजन बनता है। जब किचन में गुस्सा और घी एक साथ गर्म होता है तब बनती है एंगर स्पेशल डिश, जिसका स्वाद ही अलग होता है। तो चलिए अपने किचन में जादू जगाते हैं। भाई साहब, इस रेसिपी का सबसे अच्छा स्वाद जले हुए पराठे या फिर नमक मिर्च से लबालब सब्जी में आता है। जब बनाने वाले का पारा सातवें आसमान पर होता है तब बर्तन में सब्जी कम और बनाने वाले का खून ज्यादा उबलता है। तब चाकू भी इतनी जोर से चलता है कि बेचारा टमाटर और प्याज खुद ही सरेंडर कर देते हैं, और लहसुन और राई तेल में ऐसे उछलते हैं जैसे कि कोई जंग छिड़ गई हो। और जब घर की धनियाणी यानी कि आपकी श्रीमती जी गुस्से में खाना बनाती है तो रोटी गोल हो ना हो पर अधजली जरूर होती है। और साहेब, उस दिन सब्जी में नमक ऐसे गिरता है जैसे बिचारी की कोई वैल्यू ही ना हो। और गलती से आपने कह दिया कि नमक मिर्च थोड़ा ज्यादा हो गया मैडम, तो भाई साहब समझो कि शाम का डिनर खुद ही बनाना पड़ेगा। मेरी एक आंटी है जो जब भी अंकल से गुस्सा होती है करेले की सब्जी बनाती है और कहती है कि आज इनका सारा कड़वा सच बाहर निकाल के रहूंगी। और मेरे अंकल भी कम नहीं है, चुपचाप खा लेते हैं वो करेले की सब्जी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने तारीफ नहीं की तो अगली बार करेले का सूप पीने को मिलेगा। और साहेब, हकीकत तो ये है कि गुस्से में बना खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, उसमें पकाने वाले के दबे हुए जज्बात होते हैं। जब कोई गुस्से में खाना बनाता है तो समझ जाइए वो शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से अपना गुस्सा निकाल रहा है। इसलिए अगर थाली में ज्वालामुखी जैसा तीखापन भी मिले तो समझदारी इसी में है कि चुपचाप खाइए और तारीफ के बोल पुल जो है वो जरूर बांधिए। वाह, क्या स्वाद है! यही गुस्से की रेसिपी को प्यार में बदलने की तारीफ है। ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, अगली बार इसे यूज जरूर करिएगा। तो अभी के लिए बस बने रहे हमारे संग और सुनते रहें FM Sun City, जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ। लिफ्ट करा दे ऊपर वाले से, हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे। चलो थोड़ी सी लिफ्ट करा देते हैं।

0: का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
2: आप सुन रहे हैं FM सन सिटी

0: जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कलाकारी कहते हैं। खम्मा घणी हुकुम FM सन सिटी पर फूड लवर का चटपटा मसालेदार रेसिपी शो रेडियो रेस्टोरेंट आप सुन रहे हैं बलवीर के साथ। मैं हूँ छोरा जोधपुर का। जब मैं हूँ आपके साथ तो चिल मारो ना यार। भाई साहब, आप सबका दिन कैसा चल रहा है? शानदार, मजेदार, लाजवाब, क्या बात है। ये तो होना ही है क्योंकि FM सन सिटी जो सुन रहे हैं आप। और अभी अभी मेरे एक परिचित ने मुझे बताया कि उनका दिन तो सुबह से किचन में चक्कर काटते काटते ही बीत गया है। गैस, तवा, बेलन और ऊपर से कुकर की सीटी। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई शेफ नहीं, किसी सर्कस के जोकर हैं। तो भैया, अगर आपके किचन में भी ऐसी कोई कॉमेडी चल रही है तो टेंशन नको लेने का, क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट है किचन हैक्स। ये सुनकर आपका काम आसान हो जाएगा और हंसी आपके चेहरे पे रहेगी। अगर आपका किचन भी कुरुक्षेत्र का मैदान सा लगता है तो यहाँ खाना बनाने की नहीं बल्कि किचन के चक्रव्यूह को तोड़ने का हैक्स हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
1: चल शुरू हो जा। 1, 2।
0: भाई साहब, पहले बात करते हैं उन जनाब की जो पहली बार रोटी बेल रहे हैं। रोटी उनकी गोल तो होती नहीं, पर जैसे ही वो सेकना शुरू करते हैं रोटी जले हुए पापड़ जैसी बन जाती है। उस समय हमारी मम्मी जी या फिर श्रीमती जी ये देखकर आंखें ऐसी तरेरती है कि उन्होंने कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो। तो भैया, अब घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप उस जली हुई रोटी के ऊपर ढेर सारा मक्खन लगाइए, सॉस के साथ चिली फ्लेक्स डालिए और सबको खिलाइए और कहिए, एलो जी इटालियन क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड। आपकी मम्मी जी और श्रीमती जी खुश। घर में कढ़ाई वाली पूड़ी बनाते हैं तो वो अक्सर हमें धोखा दे देती है। कढ़ाई में तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है, पर गेस्ट की थाली में जाते ही वो पिचक चिस जाती है। रंग भी उसका सांवला रहता है। तो अब डरने का नहीं, पूरी का आटा गूंथते टाइम उसमें एक चम्मच सूजी और थोड़ी सी आप शक्कर मिला दें तो पूरी जो है हवा की तरह फूली हुई रहेगी और उसका रंग भी सुनहरा रहेगा और उसका स्वैग बना रहेगा गेस्ट की थाली में जब तक वो खा ना ले। और आप भी कह उठेंगे कि रूप तेरा मस्ताना। भैया, अब बात करते हैं खड़े मसाले की। हम मिक्सी में पीसते हैं, पर कई बार क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है वो हमें धोखा दे देती है। तब हमारे पूर्वजों के जमाने की ओखली और मूसल जो है वो हमें याद आते हैं, है ना? आप तो इन्हें ओखली में डालिए और मूसल से कूटिए और FM सन सिटी सुनते रहिए। और FM सन सिटी पर प्ले होने वाले आपके पसंदीदा गाने के साथ इसकी ताल के साथ ताल मिलाइए, इनको कूटिए मसाले को सुर ताल के साथ। कब आपका मसाला कूट दिया आपने, कब वो बारीक हो गया आपको मालूम ही नहीं चलेगा। और भैया, साथ में आपके हाथों की मसल्स ऐसी बनेगी कि आपको जिम भी जाने की जरूरत नहीं है, है ना? ये झन्नाटेदार है किचन हैक्स। तो भैया, अब इन झन्नाटेदार किचन हैक्स को यूज करिए और रसोई की टेंशन को फुस करिए। अब चाहे मिक्सर हड़ताल पर जाए या पूरी थाली में जाकर सो जाए, आपके पास इन मुश्किल का जो है जुगाड़ है, है ना? तो बस मुस्कुराते रहिए और पकाते रहिए और टिके रहिए FM सन सिटी के साथ और सुनते रहें जोधपुर के छोरे बलवीर को। आपकी नींद कौन चुरा लेता है? आपका काम, आपका एग्जाम, आपकी स्टडी या कोई और, ये तो आप जाने। पर फिलहाल ये गाना आपके लिए।

0: एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
1: भाई साहब, मोहब्बत और रेसिपी में एक ही समानता है, दोनों में थोड़ा सा ध्यान भटका तो उबाल आकर सब बाहर गिर जाता है। खाना बनाते टाइम अगर प्यार झलक जाए तो इसे स्वाद कहते हैं, और अगर पतीला हाथ से फिसल

पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप बने हुए हैं FM सन सिटी के साथ।

0: तो आ। मेरे प्यार का रस जरा चखना, FM सन सिटी का जादू हमेशा सिर चढ़कर बोलता है।
1: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
0: भाई साहब, थका हुआ आदमी सूखी रोटी देखकर मुस्कुरा देता है, पर नाराज आदमी के सामने 56 भोग भी रख दो तो वो उसमें नमक कम बता देता है। इसलिए मेरी दादी जी कहती है भैया कि बेटा मसाले कभी भी गिनकर मत डाला कर, क्योंकि नाप तोल कर तो ये दुनिया सिर्फ रिश्ते निभाती है। और भाई साहब, आज जब मैं नाप तोल कर खाना बनाता हूँ तो तड़का भी मेरा हंसता है और कहता है भाई सब्जी बना रहा है या मैथ्स का कोई फॉर्मूला सेट कर रहा है। बस साहब, आज के लिए इतना ही, अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ क्योंकि भैया पेट में चूहे मेरे कत्थक छोड़ भंगड़ा करने लगे हैं। इसलिए रेडियो रेस्टोरेंट का मैं दरवाजा करता हूँ बंद, मगर आप दिल के दरवाजे कभी भी बंद मत करना, क्योंकि दिल टूटेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।

हाँ, एक बात तो मैं आपसे बताना भूल ही गया। जोधपुर के हलवाई ने कहा है कि जीवन में मिठास रखो पर रेट लिस्ट अपनी जेब में रखो। जलेबी जैसी उलझनों में भी होठों पे मुस्कान रखो। तो मिलते हैं अगले सप्ताह नए एपिसोड में नई रेसिपी, नई बातों और नई बहानों के साथ। तब तक खाते रहिए, खिलाते रहिए और पेट खराब हो जाए तो मुझे कॉल मत करना, डॉक्टर के पास जाइए। जोधपुर का छोरा बलवीर कहता है आपको सायोनारा।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज

0: महाराष्ट्र के अमरावती वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा यादों की महफिल।
2: सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजा कर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, योगेश के बोल है, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुना रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, योगेश के बोल है, बप्पी लहरी का है संगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

हम सुन रहे थे अपने पराए फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियां जैसे अपनी धारा के संग चलती है, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियां निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारी एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहां ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए है, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयान करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है, जहां थोड़े में खुशियों की ताल जीवन

उनके अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न हैं आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूं। तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए, जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूं, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

तुम्हें मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी छोटी रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे, तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफर में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही छोटे एक एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियां बड़ी जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप जरूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

0: सूरजरी किरणा तेज है पर आपना इरादा में भी एक चमक है इन मौसमरी हर चुनौती ने मात देवती आपनी बहनारी भी आपरी एक धमक है तो इन तपती दोपहरी में बाता और गीतार और रस घोलन वास्ते कार्यक्रम गणगौर लेर हाजिर है आपरी दो सखियां पूनम देवड़ा और भावना लखारा तो सगली सखियारो स्वागत करा कार्यक्रम गणगौर रे मायने और घणे हेत प्रीत सु राम राम है सगली सखिया ने और मारे साथे जी की सखी है भावना वेणे भी घणे मानसू राम राम है
1: बिल्कुल पूनम आपने मारा गणी मान राम राम और गणगौर प्रोग्राम हन वाली मारी हगली हाथणिया ने आपरी सखी भावना लखारारा गणी मान राम राम तो सखिया हताया तो कराई लाई पण बियो पहली हुणा एक प्यारा सो गीत

0: हाँ तो पूनम,
1: हम्म,
0: 25 मई सु लेन अपने ध्यान के 2 जून ताणी नौतप्पा है वो चालेला। नौतप्पा चाल ही रही हो यार, गर्मी पड़ ही रही है। तो ये जगह 9 दिन है वे पूरे साला सबू गर्म दिन होया करे है। इन दिनार महीने अपन का ही लागे जाने कोई आबे में सु आग बरस रही है।
1: बिल्कुल
0: और यू भी कह करे कि सूरज भगवान है वे रोहिणी नक्षत्र मायने आ जावे तो सूरज री तेज और सीधी किरण है जो कि धरती माते आया करे है। व्यू धरती है जो कि तपन लाग जाया करे और
1: बिल्कुल
0: तेज तावड़ो भी लागे है। माटी है जो कि भी वह भी एकदम यू गर्म हो जाया करे। यू भी कह करे कि धरती माते जो कभी हानिकारक कीटाणु होया करे है बिना मार दिया करे है। और देखो कि नो तो अपा तो प्रकृति रो हिस्सो है, इन्हें तो अपा रोक ही नहीं सका, पर अपा कई भी अड़ा उपाय करने अपा कई अड़ी बीमारियों से बच सका। हाँ कई अड़ा छोटा मोटा उपाय कर सका। हाँ भी अपा अपनो सेहत रो ध्यान रख सका। हाँ
1: बिल्कुल सही क्यों भावना। और विज्ञान और ज्योतिष दो ही आ बात माने कि नौ तपा रे मायने तावड़ तपनो बहुत जरूरी है,
0: जरूरी भी आ करे।
1: गर्मी होनी पड़नी जरूरी है। एक कहावत भी है अपन अटे कि तपे नौ तपा 9 दिन जोए तो पुन बरखा पूर्ण होए, यानी नौ तपा रे इन 9 दिन रे मायने जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेला आने वाले चौमासा रे मायने उतनी चोखी और भरपूर बिरखा अपन अटे होवेला।
0: बिल्कुल सही किया।
1: और नौ तपा रे मायने मौसम ठंडो नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो नौ तपा है जिको खंडित हो जाया करे और प्रकृति रो संतुलन है वो बिगड़ जाया करे। तो प्रकृति रे संतुलन ने बनाए रखने रे वास्ते कड़कती धूप नहीं अच्छो मान्यो गयो है।
0: हाँ बिल्कुल सही किया। ये भी तो जरूरी है, 9 दिन तपना भी तो बहुत जरूरी भी करे है। पर इन दिनों में कई कई बातें रो आपा ध्यान रखा नहीं तो अपन का ये स्वास्थ्य सही रिया करे। तो इन 9 दिनार महीने आपने जैसे कोई पेय पदार्थ ले होना चाहिए, दही है, दूध है, छाछ है, कोई जैसे शरबत बना लो, आम पन्ना बना लो, फ्रूट है, सलाद है, एक हमारी तो ये कही है कि अपने शरीर वास्ते चोखो रहला। तो इन 9 दिन में अपने इन बातों रो जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई तरह की सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि हो सके तो 12 बजे सु ले और 4 बजे तानी घर सु बारे निकलो ही मती। अरे इतना ही जरूरी वे घरों बारे निकलना ही पड़े है, काम भी होवे तो कपड़ा सु पूरे शरीर ने ढक हन पची बारे निकलिया करो। और एडो भी वे कि घरों बारे निकलना भी जरूरी है तो अपा कई करक सुतीरा कोई ढीला ढला कपड़ा वे पहन निकलिया करो। हाँ
1: बिल्कुल सही क्यों भावना। तो चलो सुनावा एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो देखो बेना कि हर एक 3 साल बाद में एक अधिक मास आया करे हैं, और कहवे भी है कि ओ महीनो है वो पूरे ही कहने की दान धर्म और पुण्य रो ओ महीनो है। कई शहरा रे महीने, गांव रे महीने, मंदिरारी परिक्रमा होया करे हैं। ब्याह ही अपने जोधपुर रे महीने भी अबार चाल रही है भोगी शैल परिक्रमा। तो इन बारे रे महीने फोन रे माध्यम से जानकारी देवन खातर आमंत्रित करिया हाँ ओम प्रकाश जी सोनी, जिनसे बात करेला पूनम देवड़ा, जिनरी प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ी और संयोजक है मनीष सोलंकी।
2: सूर्यनगरी जोधपुर री पावन धरा जटे चाल रही है अपनी ऐतिहासिक और सदिया पुरानी भोगीशैल परिक्रमा। मारवाड़ी संस्कृति और धर्म री इन अनूठी मिसाल भोगीशैल परिक्रमा ने मारवाड़ रो कुंभ भी किया करे है, जटे लाखों री भीड़ पग पग माते भंडारा और सगड़ा भक्ता री अटूट श्रद्धा। आज इन परिक्रमा पर जानकारी देवन सारू फोन रे माध्यम से आमंत्रित है ओम प्रकाश सोनी, जो अठे आपकी सेवा दे रिया है। सुप्रसारित कार्यक्रम गणगौर में और हेत पीछू बरियोड़ा राम राम।
3: घना घना घना राम राम सा। आपने सबसे पहले तो आपने मैं और धन्यवाद देने चाहूँ कि आप मैंने आकाशवाणी में इन परिक्रमा री विस्तृत जानकारी रे बाबत में मैंने आप चुनियो और इन बाबत में मैंने जानकारी जड़ी मारे जानकारी में है, मैं आपने जरूर बताऊंगा।
2: बिल्कुल सर, तो सबसे पहले आप वही पूछनी चाहवा की भोगीशैल परिक्रमा रो इतिहास कितो पुराना है और इन्हें मारवाड़ रुकुम क्यों किया करे।
3: भोगीशैल परिक्रमा ऐसा यात्रा बहुत अनादि कालो चलती आ रही है, जिनमें तपस्या में और वो ऋषि मुनिया ने विशेष भाग रहे ऐसा मारवाड़ में पहली मरुस्थल है और पहाड़िया ही पहाड़िया है और उन माते मरुस्थल जिकी है टिबा वगैरह है उन माते नाग बहुत व्यवता सा। भोगी सेल रो मतलब वो है, भोगी रो मतलब नाग भी आ करे, सेल रो मतलब पहाड़ होया करे। तो आप भोगी सेल परिक्रमा हुकम पुरुषोत्तम मास में ही लागिया करे हर 3 साल बाद। आपको लागिया करे कि ऋषि मुनि पहली वेद ब्रह्मा ने गणना करी कि उन माने 3 साल में 1 महीना ज्यादा बढ़ जाया करे सूर्य चंद्र री गति रे अनुसार। तो उन महीना ने उन अधिक मास ने पुरुषोत्तम मास कहवायो है, इन वास्ते आ भोगी सेल परिक्रमा री पुण्य धरती हुई थी। तो उन्हें परिक्रमा रे माने इन अधिक मास में जिका भी परिक्रमा करेला उन्हें 100 गुना फल प्राप्त वेला सा, इन वास्ते आ भोगी सेल परिक्रमा करनी है और आ सिर्फ जोधपुर में ही आयोजित वैसा।
2: और इन धार्मिक महत्व,
3: इन धार्मिक महत्व तो बहुत ऐसा इन कारणों के पुरुषोत्तम भगवान यानी भगवान विष्णु ऋषि मुनिया ने आशीर्वाद दियो कि इन महीना रमा ने जिको भी कोई दान तप जप दान वगैरह करेला उन्हें इन अलग अलग महीना रमा ने किए गए दान पुण्य 100 गुना फल बत्तो प्राप्त वेला। तो आज की आस्था और उत्साह है मारवाड़ रे लोग।

0: ठंडो पानी पीऊं वास्ते। पानी पीने 2 मिनट कूलर हाँ में बैठा बैठा ने वे मैंने देखियो हाँ मैं आपको बात करूं नहीं चाहू। मैं तो बोलो सा तुम्हारी अच्छा इच्छा है, मैं तो फरमाओ भोजन की इच्छा है तो भोजन लान दू, पानी की इच्छा पानी के पानी तो मैं पी लियो बेटा। मारी इच्छा है कि मैं 10-20 परिक्रमाओं तो जाए हो मारी उम्र में, और पहली बिछड़ियों जी भी जाओ तो लेगा। अबे हटू बिछड़ियों जी बहुत दूर पड़े, रहता ना डू बहुत दूर पड़े, तो
1: अच्छा
0: मैंने दर्शन करान लिया बेटा। तो हमारा डोकरा हाव भाव देखा तो मैं दर्शन करने चाहे, मैं हमारे गाड़ी में तो बैठान बिछड़ियो जी दर्शन करान प्रसाद बीजो धीरान पाचो बैठान पाचो मारे अटे शिविर में छोड़ियो। मैं कह भाई अकेला की कराया तुम्हारा टाबर तो मारे रहे
1: अच्छा
0: विदेशों में रहे, मैं अटे अकेले जो मारी लुगई है नहीं, मैं अकेलो आई गयो मैंने कोई छोड़ गयो। अब तू मैंने दर्शन करान लिया बहुत दुआओं दी हो बहुत, और माने हो मौको मिल गयो सेवा करने, मैं सेवा करने बैठा बटे तो
1: बिल्कुल
0: माने
1: सर।
0: और बुजुर्ग आज मेरी सेवा करण में यार आँख में आंसू आई गया सा। मैं कह रो मत, आप फिर कभी कोई कहते हो तो मैं तो फिर दर्शन करा लिया हूँ, आप
1: बिल्कुल
0: इतनी इच्छा है तो जरूर करांगे। ओ मारो एक अनुभव भी हो क्योंकि आपने सुना दिया।
1: बिल्कुल सर। तो ओम प्रकाश जी, आप भोगीशैल परिक्रमा से जुड़ी इतनी बढ़िया जानकारी मान श्रोतावा तक पहुंचाई और आप कीमती वक्त आज माने साथे साझा करियो, तो आप पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी में पूरा प्रदेश सुनेला तो इन्हें कुछ कुछ जानकारी मिलेला ही मिलेला।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद सर,
1: सर।
0: आपने बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अबार आप भोगीशैल परिक्रमा रे बारे रे मैंने जानकारी सुनी ही ओम प्रकाश सोनी सु और जिनकी बातचीत हुई ही पूनम देवड़ा री, तो इनकी प्रस्तुति ही राजेश लामरोडरी और संयोजनों मनीष सोलंकी रो। तो अब्बे होना हो प्यारा सो गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पूनम, देखो कि गर्मी रो मौसम तो चाल ही रहे है, और सूरज है वो भी देखो नी कि आगरे जिया उगल रहे है, और लूरी भी तपिस है, वह सगला जनजीवन है भाई लूरी तपिसू तो परेशानी जे दुखी जे। और शहर मायने तो देखा कि अपा एसी चाले ही है, पर जेका गांव है, गांव रे मायने बिना बिजली भी सुकून मिल जाया कर। एक एड़ो साधन है कि एसी वाली झोपड़ी बिने किया कर, हाँ साधारण सी झोपड़ी होया करे है, बिने खी विनी जी की दीवार होवे वे माटी री बनी ओड़ी होवे, इन ऊपर खी पर फूस रो छप्पर होवे, और बिन बिन ऊपर पानी रो छिड़काव कर दे तो जो के अंदर बैठा हुआ ने बिरे ठंडी ठंडी हवा आया करे, वह कहन के बिना बिजली भी मन ने सुकून दे दिया करे है।
1: बिल्कुल सही क्यों भावना। आज अपने लगे कि तकनीक आपने जीवन एकदम आसान बना दिया है, पर कहीं कदी आप सोचियो कि जब बिजली कंप्यूटर या कोई भी डिग्री नहीं,
0: हाँ
1: जिन्हें भी अपना बडेरा है जी को प्रकृति री हर चुनौती रो की कर सामनो करता।
0: हाँ
1: तो आप बात कर रहे देसी एसी री झोपड़ी
0: देसी
1: री,
0: ऐसी
1: तो
0: झोपड़ी।
1: इनकी छत बनाने रे मायने बांस आकड़ी री लकड़ी पाए सीढ़ियों और खीपड़ा रो उपयोग हो। तो सीढ़ियों और खीप ने भारी पत्थर सु दबाए पछे समतल करने
0: हाँ
1: खारिया या मोजड़ी सु बांध दियो जाव, तो और अब परत इतनी मजबूत रहती कि सूरज री तेज किरणा भी इनमें भेद को नहीं सकती।
0: हाँ
1: पछे पानी सु इन पर छिड़काव कर देता, और जब भी गर्म लू बासती तो वह गर्म लू री जी की हवा होती वह इन टकरा ने ठंडी हो
0: ठंडी
1: जाती,
0: हो
1: और वह
0: जाती।
1: जब झोपड़ी रे अंदर आती तो एकदम देसी वाली एसी
0: हाँ
1: जी
0: देसी एसी रो अपने असर हो ही जाता महीने बैठोड़ा ने।
1: एकदम ठंडक महसूस होती एसी जेड़ी। तो आ तकनीक पूरी तरीका से इको फ्रेंडली है, नहीं कोई बिजली रो बिल, ना कोई ग्लोबल वार्मिंग, कम लागत और ज्यादा टिकाऊपन। और आज भी आ पारंपरिक तकनीक है जी को ग्रामीण जीवन रे मायने देखने अपने मिलिया ही करे है।
0: तो पूनम वो झोपड़ी रो सिर्फ आराम रो ही साधन नहीं है, वो इसु कही है अपन पर्यावरण भी बचा हो जावे, और प्राकृतिक ठंडक अपने दिया करे है, और बिजली री बचत भी हो जावे आप बताई रिया हो, और इन तैयार करने रो खर्चा है वो भी कम लाग्या करे है, और इरी हवा है वो अपन स्वास्थ्य रे वास्ते घनी ही चोखी दिया करे है। बैठोड़ा ने गर्मी री हवा में खेतार महीने काम कर रहे हाँ, तो गर्मियों काम करता करता इर महीने आन बैठा तो एकदम अपने ठंडक मिलिया करे है,
1: बिल्कुल
0: और ग्रामीण संस्कृति भी पहचान भी है।

0: पूनम, एक कहावत तो आप सुनी हो वाला
1: बोलो
0: के
1: कौन सी?
0: रुपया कई पेड़ माथे उगे है कई,
1: बिल्कुल।
0: तो आ कहावत अपने राजस्थान में मैंने आज साची होगी है। कहनी के आकड़े रे पौधे रे जकावे फल लागया करे है, बेनु रुपया कमाने रो साधन है वो हरु है को है। जको देखो कि सालों साल ये बेकार पड़ी रहती ये आकड़े रा पौधा, और कहनी कहने खरपतवार जे ही समझता हाँ, तो वो आज जका पैसा कमाने रो साधन हो गयो है।
1: बिल्कुल, रेगिस्तान री धरती पर उगन वालो आकरो पौधो जेटे पानी री एक एक बूंद घनी कीमती होवे, उन मरुधरा रमाइने आकरो पौधो बिना कोई मेहनत खाद पानी रो उग जाया करे है। पहला लोग इन्हें जहरीलो समझता, अनुपयोगी समझता, पर आज अठेरे लोगा सारू और मोटी कमाई और फौजी भाईरी सुरक्षा रो मोटो जरियो बन गयो है।
0: बिल्कुल बन गयो है। तो अबार हाल ही में आपा हुनी हो कि रूमा देवी जी है वे कपड़ा विशेषज्ञ रे द्वारा इन्हें जांच करे ही इन्हें फल री, तो इन्हें कहनी के अनोखी प्राकृतिक रेसेसु जैकेट सोल और सूटर बे कई तरह रा जका ऊनी कपड़ा है बे यूं बनिया करे, और इतना भी ऊनी बने कि कितनी भी ठंड हो नी भी हूँ आपा सुरक्षित रह सका हाँ। और तो और देखो कि विदेश रमाइने भी इन मांगे वह बढ़ गई भी है।
1: बिल्कुल सही क्यों भावना। और आखिरी पाड़े सु जो चमकदार पोलो और एकदम बल्दियो रेशो निकले जिन आप बालपने रे मैंने कहीं हापू कहता कि भाई हापू ऑर्डर आई गए, तो वो है जिको डेजर्ट सिल्क यानी रेगिस्तानी सिल्क रेशम है जिको कही जा करे। बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर जिला की ग्रामीण बहना और किसान खेता सु आखिरी पाड़िया इकट्ठी करे, इन्हों ने धूपरे मैंने जालीदार कट्टा रे मैंने सुखावे जिनसु पाड़ी है जिको खुल जावे और इन माई सु जो रुई जड़ो मुलायम चमकीलो रेशो हुए वो बाहर आ जावे, पछे इनू जो भी गरम कपड़ा बीजा है वे बनाई जा करे धागो बनाने
0: बनाया करे है।

तो देखो पूनम की छुट्टियां चाल ही रही है अबार टब रिया रहे और अपने टाइम रे मैंने जब छुट्टियां होती नहीं तो गर्मी री छुट्टियां पूरे ही 2 महीना ताणी होया करती मई और जून पूरे 2 महीना छुट्टियां होता जो को जी भर न अपा छुट्टियां मनाता हाँ और जुलाई आते ही स्कूल जावन री इतनी उतावड़ होती कि स्कूल खुलता ही अपा स्कूल जा रहा करता हाँ और ई 2 महीना रे मैंने ही अपा देखो कि छुट्टियां रे मैंने एड़ी अपने घरवाला दिनचर्या अपने बनावता कि टेम माते उठनो सूर्य भगवान ने अर्घ देवनो और बड़ो रो काम करनो के ये उपनिया सा बे भी अपन ने पढ़ाया करता हाँ उनरे बाद में कोई खेल है बे खेलन वाले

0: खेल है, कंचा है, संतोलियो है, कबड्डी है, खो खो है, रस्सी कूदनो है, लंगड़ी टांग है, आंख मिचोड़ो है। तो एड़ा कई गेम होता। हाँ बे अपा सगड़ा मिल परा आसपास वाला टाबरिया और वे खेल है जो अपा खेल लिया करता। हाँ आजकल
1: बिल्कुल
0: तो अपा देखा नहीं कि टाबरिया का टाइम मिल जावे नहीं, तो सगड़ा कने अलग अलग फोन हो जाया करे है। तो वे टाबरा रे एड़े खेल है वे भूल ही गया है अपन टाइम ही जड़ा खेल होया करता। हाँ पण देखो फोन रे सागे सागे आपसी प्रेम है वो भी धीरे धीरे टाबरिया रो कम होन लागे है।
1: बिल्कुल सही क्यों भावना। आजकल तो देखा बच्चा फोन रे छोड़े ही कोनी, मतलब कटे शारीरिक गतिविधि तो बच्चा में देखने
0: देखने
1: मिले ही
0: मिले
1: कोनी।
0: कोनी है।
1: देसी खेल जो सिर्फ खेल कोनी होता बल्कि बच्चा ने जीवन जीना सिखाता है इन खेलने खेलने।

0: खेल को नहीं होता बल्कि बच्चा ने जीवन जीना सिखाता है इन खेलने खेलना सो कोई मतलब के फायदा भी होता हाँ। जान मोटापो जड़ी कई तरह की शारीरिक समस्या है बचाव हो तो मानसिक समस्या है उन्हें बचने में मददगार साबित हो तो सहनशीलता बढ़ती हार जीत दोनों स्वीकार करना खेल खेल में ही सीखे जाओ कि भाई हार भी हो सके जीत भी हो सके आजकल रहा बच्चा तो इन्हें स्वीकार ही कौन करे बस मन ही जीतना है हारना तो है ही नहीं
1: बस सही वो सहन शक्ति नहीं है आजकल
0: टीम वर्क हो तो सहयोग हो तो नियमों का पालन करना बच्चों है जिको खेल खेल रहे माध्यम से सीख जाते ऐडा बहुत तरीका का खेल जो आप बताइए ही हो चार खूना का खेल हो गया रुमाल झपटो हो गया स्टेचू वर्ड हो तो जिम्मे बच्चा एकदम स्टेचू बोलता और अपने एकदम सीधो खड़ो हो जाना हो तो कंचा खेलना आप बताया गड्ढा खेलता अपने ठा हो तो कभी बॉल के साथ खेलता कभी यू ही खेलता अष्टचंगा हो गया ऐडा बहुत ही पुराना खेल है जिको आप खेलता और उनसे है जिको आप सीखता भी
1: पारंपरिक खेल खेलता नहीं तो बच्चारे एक दूसरा सु पहचान होती ही एक दूसरा ने पहचान करावता हाँ और एक खेल मनोरंजन ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य मित्रता और संस्कृति सु जुड़ोड़े एक माध्यम हो जो टाबरिया ने ध्यान पड़तो कि किन टेम कई होया करे कई खेल खेल लिया करे आपस में प्रेम की कर लिया करे हैं
0: बिल्कुल सही क्यों और जब दोपहर में तावड़ा पड़ता उन टाइम आप घर में बैठने जो इंडोर गेम्स होता जो कैरम बोर्ड हो गया ऐ चीजें खेलता और जब शाम हो जाती तो शाम रे पूरी गली मोहल्ला रे मायने बच्चा री धूम रहती और आजकल तो गलियां बिल्कुल सुनी नजर आवे बच्चा कटी नींद ही को नहीं आवे क्योंकि वे तो फोन से आगे ही को नहीं आवे तो कटीन कटी अपने वापस नवाचार लाना जरूरी है कि बच्चा ने फोन थोड़ा दूर करने अपना जो पारंपरिक खेल है वे पाचा बच्चा ने खेलाना है
1: बिल्कुल

0: तो भावना अपन हाँ, गर्मी छुट्टियां री बात करी
1: हाँ,
0: तो गर्मी छुट्टियां में अपन नानी घर जाता
1: हाँ,
0: और नानी घर की तो लाड नानी अपन लड़ाती नहीं
1: हाँ,
0: जो आम रो तो ढेर लगा देती
1: हाँ,
0: और हर बच्चे ने चाहे बच्चों का ही बूढ़ो हो कोई भी हो आम रो बहुत शौक हुए और आम आपरे गुण और स्वाद रे कारण ही फला रो राजा है जी को कहलाया करे आम रो नाम सुनता ही मुंह रे मायने पानी आ
1: जाया करे है।
0: तो विश्व रे 60 सु भी ज्यादा देश रे मायने है जी को आम री पैदावार होया करे इन मीठे रसीले फल रो जादू इन कदर है कि पूरी दुनिया रे और आपरे वश रे मायने कर रियोड़ा है इन्हीं बल पर इन्हें कहे जाया करे कि आम केवल आम नहीं है बल्कि कुछ खास है और आम री तरह तरह री किस्मा भी अपन अटे देखने मिलिया करे तो आम री किस्मा भी बहुत अजीबो गरीब है तो आज थोड़ी सी जानकारी वीरी भी दे दा आप सखिया
1: बिल्कुल विया करे पूनम आम री बात करे तो जदे वो काचो आम होवे है केरी हुए है बिनो आम पन्नो बना दा नहीं तो मुंडे में सु बना तो अपने पानी आ जाया करे है। और आम री पक्यूड़ा आम री तो बात करो तो वो मिठास रो खजानी जो विया करे है तो कह नहीं कि अटे कई तरह रा आम विया करे जैसे कि केशरी आम है वो मीठो तो वही है बिन साथे खुशबू भी बिनी बढ़िया विया करे बिनो गुद्दो है वो भी अच्छो होया करे और बिनो रस है वो बढ़िया निकलिया करे है। बी जी दशहरी आम है तो बीरो का ये कि बिनी पहचान करन वास्ते बिनो छिलको हुए वो पतलो होया करे है और बीरा जका अंदर रेसा होया करे वे भी कम होया करे और खाना रे मैंने स्वाद मीठो और मुलायम होया करे देखन रे मैंने। बे ही बात कर ला कि ये हापुस आम है तो हापुस आम तो हगड़ो महंगो और बढ़िया होया करे है आम इरी खुशबू अलग ही जिया करे मीठी अणुती लगे जद पहूंगा तो मीठी अणुती लगे और छोखी विया करे है।
0: बिल्कुल अब बात करो गुलाब खास री तो इन वैरायटी रे मैंने गुलाबी रंग और गुलाब जड़ी खुशबू और स्वाद रे कारण इन रो नाम है जिको गुलाब खास है
1: हाँ।
0: और बात करा तोतापुरी आमरी तो तोता रे चौच जड़ी नोक और रंग रे कारण इन्हें तोतापुरी आम कहया करे है
1: हाँ, हरो रंग भी करे
0: हाँ। और एकदम आगू है जो नुकीलो या करे लगे तोतारी चौच है
1: हाँ।
0: और सफेदा आम इन आम रो छिलको हल्की सफेदी वाला होवे इन वास्ते इन्हें सफेदा कहया जाया करे है। सिंदूरी आम जिनरो छिलको हरे रंग रे अलावा सिंदूरी रंग भी दिखाया करे है
1: हाँ।
0: और एक आम होवे नूर जहां आम वो बहुत ही दुर्लभ कीमती और विशाल आकार किस्म रो आम है वजन इनो 2-4 किलो तक होया करे और मध्य प्रदेश रे अलीराजपुर जिला रे कठीवाड़ा क्षेत्र रे महीने वो पायो जाया करे
1: अच्छा।
0: और इनकी कीमत प्रति फल री बात करा तो 1,000 से 3,000 रुपया होया करे है
1: बड़ो महंगो भी करे
0: हाँ, पर स्वाद रे महीने मीठो और शानदार खुशबू होया करे इन नूर जहां आम री।
1: और अभी यही देखो की बात करा चौसा आम री तो चौसा आम है वो कहने के जूस या अमरस बनाने वास्ते इन्हें काम में लीजिया करे भी मैंने कहने के वो गुद्दो गणो या करे इन वास्ते इन मैंने जूस गणो निकलिया करे है। तो ये जिदे आम अपा खरीदानी तो कई खरीदता टाइम कई बात तारी अपने सावधानी रखनी भी जरूरी रिया करे जैसे आप आम खरीद रिया हो तो खुशबू सूंघन जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि अपने ध्यान पड़ जावे कि वो मीठो है कि खट्टो है नी। और अगर बहुत ज्यादा चमकदार आम आपने दिख रही है तो बिसु अपने बचनो चीजे क्योंकि कई केमिकल सुड़ा पखियोड़ा भी होवे है ब्यू चमक आ जाया करे है। और हाथ सु हल्को सी दबान देखना चीजे हल्को हल्को सी दबे तो वो कहने के वो मुलायम है तो इन वास्ते वो चोखो वाला और रसदार भी हो वाला। और कई बार अपा आम ले रहे हाँ तो अपा देखा नहीं कि काला दबा हुए कई जगह कटियोड़ा हुए है तो भी आम लेनो अपने बचना चाहिए है।
0: बिल्कुल और हमेशा जब भी अपा आम खरीदने लावा तो विने चोको धोन ठंडा पानी रे मैंने माटी रो जी को पत्ती रो या करो उन मैंने भिगोन रख देना ताकि जो तासीर है वह ठंडी हो जावे और एकदम ठंड ठंडो आम खाउन में भी बहुत चोखो लागे।
1: तो आप भी आप परिवार सागे आम री मिठास रो आनंद लीजो और स्वस्थ रहो।

0: तो बिल्कुल एसी तो लाग जाला भावना, पर एसी उ सीधा गर्मी में बारे मत जाई जो,
1: नहीं तो कहने के वा उजाला
0: थोड़ा सा नॉर्मल तापमान में रहने पचे एकदम गर्मी में बाहर निकल जाए ताकि कोई शारीरिक परेशानी अपने नहीं आवे। तो इन बातारे साथ ही आज जो कार्यक्रम रो समय भी है वो भी पूरा ओवन लाग गयो है। तो आपरी दोनों सखिया पूनम देवड़ा और
1: भावना लखारा
0: ने दिराव सी चाला राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गणगौर। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से मैं कनकलता।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में

0: 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरे संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराय विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन

0: घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम है सदाबहार नगमे. यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत. और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से. आप सबका मंगल हो, कल्याण हो. नमस्कार.

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। आजकल पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक
1: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
2: बात तो बिल्कुल सही है। और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
1: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना, इसमें पसीना जब बहता है बहुत ज्यादा पसीना निकलता है।

0: द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं, उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो, और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
1: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और बिल्कुल हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है, तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: बिल्कुल अपने को पूरा ढक के निकलें, जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
1: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, और अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लें, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें।
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
1: हल्का
2: सैलेड वगैरह लें।
1: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
2: तरह के
1: घर में
2: जी तरह तरह के चावल
1: तरह तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का,
2: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
2: हर घर में सखा भी

0: में भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में. तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है.
1: बिल्कुल. और आरती, आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना. तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
0: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं.
1: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोगों ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा. और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण. अब जो घर के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है. ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए. और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है. देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
0: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
1: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं. तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
0: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, इसके और सकारात्मक क्या है. और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
1: तो तरह तरह की साड़ियां आज कहाँ चलने वाले.
0: आज हम साड़ी लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है.
1: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है. तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
0: तो गीत सुन लेते हैं पहले.
1: चलो चलते हैं.

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से

0: चारित किया जाता है गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके, वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
1: जी कितना इतना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं, हम जानते ही नहीं कि साड़ी अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम
1: बिल्कुल। और पीले रंग के लिए हल्दी का

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इसमें उपयोग किया जाता है
2: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है, फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है, अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
1: जी, कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल देना है, और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आंच पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
2: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती, मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती है कि नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन ही लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन
1: नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल। जिसके लिए सब लोग, मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती है, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल। और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बिल्कुल, और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने

0: बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते, और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
0: बिल्कुल
1: हो रहा है।
0: ये शोध में सामने आया है
1: जी
0: कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे
1: जी,
0: वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है,
1: और हम शिकायतें करते रहते हैं आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
0: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
1: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और फंस भी जाते हैं, ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे तो, गेम बना रहे हैं ना वो लोग
1: जी,
0: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है,
1: हाँ,
0: वैसे बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
1: तो ये
0: फायदा
1: और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से,
0: और सबसे बड़ी बात है दीपक की, हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल, और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं, वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं, मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल, और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आए नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, इससे सीखा ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती है, फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी है, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसे, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसे, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कभी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीजें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीजें को करें, तो कोई चीज इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि वो फायदेमंद है,
0: बल्कि
1: वो अपना दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीजें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीजें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लिए तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब
0: का
1: तक आप,
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं, उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है, बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखती है कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है, और बताती है कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब

0: वह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो होता है वो उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
1: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

गाना गाते बनी मन चली, छुप के छुपा के छुपी नजर बचा के गुप चुप चली।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: युक्त ऐसी चीज है जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
2: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधार

0: का एक तरीका है, बिना
1: बिल्कुल
0: किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए। आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस कैसे की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए

0: आरती देखो, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से 1/2 कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है, तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, 1/2 कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून ले जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें 1/2 घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे 1/2 घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर 1/2 घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं, और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए, फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं, चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइया है,
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है, वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है, तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नजदीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहां पे भी हुई है। और एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहां से मैं आई हूं वहां पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूं, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है, जहां पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहां से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं हूं। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी। बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहां से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहां पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर, ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में, ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफी एज ए नो टीन एजर काफी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला व्हाइट, तो व्हाइट, तो पता चला एप्रिन भी व्हाइट होता है। और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहां से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफी सीरियस स्टडीज और हार्ड वर्क। आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूं, उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आंखों से उस समय नहीं दिख रही थी। बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से। मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया, जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है, जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहां से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है, उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसे

0: ब्यूटिफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है. अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो. आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है.
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं.
1: इकबाल फिल्म का गाना है.
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है.
1: क्या बात है, सुनते हैं.

ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिर

0: इंडिया के लिए भी काम किया, तो ये जो आपकी मुहिम है ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर एपीजे कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम, तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए, और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो, तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में, तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर है, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है, तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं, क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तरह तरह की चीजें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको इम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड कि जो लेडीज थी वो ज्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है जहां पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है, आपको आपको करियर भी देखना, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, एनवायरमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
2: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर

0: एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
1: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है, फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो COVID-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेट ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
0: क्या बात है।
1: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा, उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
0: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
1: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
0: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
1: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है, नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं।

0: 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहां पे मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहां पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहां पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहां पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया, मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला। CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना, फ्लाइट में थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था तो वो भी एक जान बचाए, जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया और

0: क्या था, रन पे ही था, तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
1: लेकिन ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स। सो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है
1: जी, जी।
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी।
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है। और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो, अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो, और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो?
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: भी आसपास हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टरों को सीपीआर आता है।

0: ही आता है, वहां पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया @gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रांग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इस

0: में आपका फोकस क्या है, किन चीजों पर आप ज्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, तीन पेशेंट थे जिसमें दो को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इश्यू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती, नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट तो उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
0: प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गांव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जांच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहां पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलो अप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो, स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
0: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये बेहद खतरनाक है.
1: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये

0: एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब से आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सीबीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको, आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए, उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है, क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया, और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयां फेल है, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है, जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हो या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता।

0: जो हार्श है, आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे. तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना.
0: ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट.
1: सुनते ही गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड

0: आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो. सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ. तो उस पर भी काम करती हूँ. एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग. सॉन्ग तो ज्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है. बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली. अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी. मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं. ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी.
1: जी बिल्कुल. तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं. मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं. 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
0: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है. पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में. और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल उसके बारे में. और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें. और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 एमपी पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग. और रिसेंटली एक एमपी फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 एमपी एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन. बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करे, न कि कियोज में यूज करे. और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है. तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है. अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हो, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल है. और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर. सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं. और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं. वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए. तो ये बहुत बड़ा चीज है. और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए. बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच.
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से. रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. आज के मेहमान.

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र हो।

0: होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यूर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: माने गर्भ
1: गुमेज है कि मैं राजस्थानी हूँ। हसरत जयपुर जी की इन लाइन सू मैं आज रे कार्यक्रम री शुरुआत करूँ। सचड़ा माइड वासा रे इन कार्यक्रम में आप रो घने मान स्वागत है। सब हेतालु श्रोता आप सुन रिया हो युवा।

रो मन भावनो कार्यक्रम में यो वाणी। आज है बुधवार रो दिन और आज यो आकरे खास निम्बोड़ी फरमाइसी कार्यक्रम जिनमें मैं आपने सुना हुआ माइड भाषा में लिखुड़ा चोखा चोखा गीत। यदि आप भी माने फरमाइशा भेजना चाहो, आप अपनी मन पसंद रा गीत सुनना चाहो तो आप माने मारा व्हाट्सएप नंबर माते मैसेज करने भेज सको। मारा व्हाट्सएप नंबर है 94133 29359 और आज आप रे सागे

तो साधारण यानी 1 घंटे रे कार्यक्रम में कोशिश कराला आप सब गुलारी फरमाइश आने कार्यक्रम में शामिल करने री। तो आज री आप पहली फरमाइश आई है मेघवंशी नगर बादुकला जोधपुर सु। भेजन वाला है दिनेश सोडा, रुद्राक्ष, भाव्यांश, रमनदीप, निशा, अरप्रिया सोडा।

साथड़ा आपने में एक राजस्थानी शब्द है जो को दिया करा आज रो राजस्थानी शब्द है ओबरी। यदि आपने ओबरी शब्द रो हिंदी अर्थ मालूम है तो आप माने मारा व्हाट्सएप रे नंबर माते इन रो अर्थ लिख कर भेज दे रो। मारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94133 29359।

0: सदरा, आज आप सुन रहे हो बुधवार दिन खास निम्बोड़ी फरमाइशी कार्यक्रम। कई फरमाइशा माँ दूर पहुँचती हुई है, जिन्हें सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र हमारे साथ जुड़िया है दीपक सैनी, प्रमिला अनुश्री सैनी।
1: टीकमगढ़ मध्य प्रदेश हूँ, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष।
0: महादेव पारासू राजस्थानी गीतरी फरमाइश लिखन भेजी है मीरा, सिमरन और योगेश कुमार।
1: कलानौर सू नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा।
0: रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर सू माने फरमाइश लिखन भेजी है लालगिरी गोस्वामी और हेमलता।
1: भोपालगढ़ सू राजेंद्र दिवारिया, सोनाक्षी, आरती, किशन, जयकिशन, बनवीर सिंह, पुरोहित।

0: बायां सठानी देवातड़ासुआ अपने सागे जुड़िया है जबर सिंह भाटी, उमा कंवर, ओम विजयपाल सिंह भाटी, शोभा कंवर, चेतन सिंह भाटी और सोमपाल सिंह भाटी।
1: औखत आयो है मोती नगर दिल्ली सू भेजन वाला है कविता अनिल गौरव अरमानसी अरोड़ा।
0: कला गांव से फरमाइश लिखन भेजी है सागरमल जी सोनी।
1: मुरादाबाद यूपी सू भेजन वाला है मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा लक्ष्य सोनी मोहिनी रितिक और बलवीर सिंह।
0: गांव धुंधाड़ा से फरमाइश लेकर भेजी है अलादीन धुंधाड़वी।
1: कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सू रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित बेबी गर्वी और हिमांशु चौहान।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें,

0: रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सदरा आप सुन रहे हो युवा और खास प्रोग्राम युवाणिया। आप रे सागे, मैं हूँ आप रो साथी देवी सिंह। सदरा हर प्रोग्राम में, राजस्थानी भाषा रे प्रोग्राम में, मैं आप सू बात करा करा अपने प्रदेश रे एक शहर रे उनारी खास बातारी। सदरा आज आप रे सागे में ले रहा हूँ उदयपुर। उदयपुर नाम जद अपने आगे आवे तो आंख्या आगे झीला, महल और ऊंचा ऊंचा पहाड़ और इन सबारे बीच में इन शहर री साफ सुथरी हवा और मिठास। मेवाड़ क्षेत्र रो घणो चहितो और समृद्धशाली शहर इन बीच बसोड़ो सिटी पैलेस और उनरे चारों ओर बनियोड़ी झीला आपरे मन ने पिघलाण री क्षमता राखे। अठेरी दीवारां पर बनियोड़ी कलाकृतियां और चित्र कोई फिल्मारी कहानियां सू कम कोनी। सामरे टेम राजस्थानी खाने रे आनंद रे सागे, जद आपा राजस्थानी नृत्य रो लाओ लेवा तो आपनो उठन रो मन वठे सू नहीं करे। आप राजस्थान रा यदि हो, यदि आप राजस्थान सू बाहर हो तो आप जरूर एक बार उदयपुर ने आप री खुद री आंखिया सू देखो। यदि आप कदे भी उदयपुर गया हो तो आप रो अनुभव आप मारे सागे जरूर साझा कर जो। मारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94133239359।

0: साथ ही ना लोक धुन और लोकगीत जखी मिठास है वह मन ने मोह लेवे है, और आपरी फरमाइशा जखी लगो लगा आ रही है। और आ फरमाइश आई है मधुबनी बिहार से, भेजन वाला है मोहम्मद साबिर और साजिद अली।
1: रायगढ़ बिहार सु और खंडवा सु फरमाइश लेकर भेजिए उमर आज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक, दुर्गा कुमारी और सपना।
0: राजकोट सु कौशल्या, सोनाली और सुरेश जोशी।
1: भोपालगढ़ से फरमाइश लेकर भेजिए राजेश दिवारिया, नंद किशोर, आरती, सोनाक्षी और किशन।
0: डुमरा बिहार सु आसमान सानी, आजमा परवीन।
1: जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश लेकर भेजिए सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।
0: बिलाई नगर सु अनुश्री प्रदीप।
1: गांव गुड़ा अखिराज, तहसील देसूरी से फरमाइश लेकर भेजी है हकीम खान, मोहम्मद समीर, सानिया, नीलम और हुरमत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: साथीडा लगो लग आपरी फरमाइशा मां दूर पहुंच रही है पोखराज प्रजापत मारे सागे जुड़िया है कगाऊ बाड़मेर सु
1: सनेचो खंडवा सु राधिका दुर्गा कुमारी और अनिता राज
0: गोपालगढ़ राजस्थान सो फरमाइश लिखन भेजी है धर्मेंद्र चिंपा कपिल और पूजा परिहार
1: इंदिरा विहार दिल्ली सु बेबी अंसारी निशा और डब्ल्यू बी अंसारी
0: जोधपुर से कॉलोनी सो अपने सागे जुड़िया है दीपक पवार
1: जेल रोड बक्सर सु असलम अंसारी शमसून हक एम डी राज अंसारी और फातमा राज
0: प्रतापनगर से अपन फरमाइश लेकर भेजी है मनोहर चितारा सरोज और पंकज
1: झारखंड से प्रेम सिवान संगीता और दिलीप गोप
0: खेतेश्वर तहसील सिंदरी से फरमाइश लेकर भेजी है नागसिंह राजपुरोहित तनवीर गजेंद्र और भावेश
1: कांडला कसू जगदीश जौहरी पूजा और पायल
0: सादुल शहर से फरमाइश लेकर भेजी है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला।

0: श्रोताओं,
1: अभी आप सुन रहे थे युववाणी, आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता

सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31

0: जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। इस समय शाम की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है गुड इवनिंग जोधपुर।

लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर, आपके अपने पसंदीदा चैनल एफएम सन सिटी पर। गुड इवनिंग जोधपुर में हम बातें करने वाले हैं कुछ खास, पर हमेशा की तरह कुछ जोधपुर से रिलेटेड। तो क्यों हमारे लिए जोधपुर इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा अपना शहर है, और अपने शहर की बात कैसे ना की जाए। तो बातें करेंगे और भी, पर पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हर दिन कल से बेहतर हो और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने की सोच हम सब रखते हैं, पर इस सोच में बहुत थोड़े लोग हैं वो सचमुच एक्ट कर पाते हैं या अपनी सोच को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कुछ ही लोग हैं जो कोशिश भी करते हैं कि हम अपडेट और अपग्रेड भी हों। अच्छी बात है, पर हर बार क्या आपको लगता है अपने आप को इतना इम्पॉर्टेंट कंसिडर करना ही ज़रूरी है? कभी कभी मी फर्स्ट की जगह माई सिटी फर्स्ट, माई कंट्री फर्स्ट, माई होम फर्स्ट जैसी फीलिंग्स भी रखनी चाहिए। और ये जब हम अपने कल्चर में, अपने संस्कार में लाने लगते हैं तो अपने आसपास कुछ बेहतर बनाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप से अच्छा होने लगता है। ऐसी आदतें डेवलप हो जाए तो हमें किसी और में कमियां नज़र आएंगी ही नहीं, क्योंकि सब अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, वो भी किसी और के लिए, तो अपने आप से चीज़ें कुछ बेहतर होती जाएगी। ऐसी ही कुछ अच्छी आदतों के बारे में बात करेंगे, पर पहले चलते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

मैं भी यही सोच रही थी, कह दूं या चुप रहूं, पर सोचती हूं कह ही दूं। हां क्यों ना कहूं, जब भी किसी और के पास कोई अच्छा गैजेट होता है तो देखकर क्यों लगता है ऐसा हमारे पास होना चाहिए। किसी की अच्छी गाड़ी देखकर लगता है ऐसी गाड़ी तो हमारी होनी चाहिए। किसी का साफ सुथरा सा सुंदर सा घर हो, बगीचा हो, तो देखकर लगता है हमारा ऐसा होना चाहिए। पर किसी और जगह को साफ सुथरा देखकर ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमारा शहर भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये बात कहनी क्यों पड़ती है, जब किसी और की अच्छी चीज़ देखकर हम ये सोच सकते हैं कि चीज़ हमारे पास हो तो जो हमारे पास इतना सुंदर अपना अपना कहने लायक शहर है उसे हम अपना इतना सुंदर क्यों नहीं बनाते। क्यों कोशिश नहीं करते अपने आप से, क्यों सब कुछ हम किसी और के भरोसे छोड़ना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं कहीं और से हो। जी हाँ व्यवस्था हो रही है, पर अगर हम उसमें अपने आप से भागीदारी करें तो कितना बेहतर हो पाएगा और कितना सरल भी, कितनी सहजता से सब कुछ सुंदर और स्वच्छ भी लगेगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो किसी एक के लिए नहीं या एक जगह के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जब वो सोच सकते हैं तो हम सब अपने अपने घर के अलावा अपने शहर के बारे में तो सोच ही सकते हैं। अगर ऐसी आदतें हमारी हो जाए तो कितना कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें कोई क्लिनलीनेस ड्राइव्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कोई आयोजन अलग से मुहिम चलाने जैसी ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि आज इस जगह को साफ़ किया जाए उस जगह को साफ़ किया जाए। हमारी आदत में ही अगर ऐसी सफाई रह जाए तो कितना आसान हो जाएगा। जब भी आप बाहर निकलते हैं घर से बाहर तो एक बार सिर्फ मुआयना करने की नज़र से आसपास नज़र दौड़ाइएगा। जहाँ भी कचरा रखने के लिए, कचरा डालने के लिए जो पात्र रखे हैं आधे से ज़्यादा ऐसा देखा जाएगा कि वो तो खाली है और उसके इर्द गिर्द बहुत दूरी पर कचरा फैला हुआ है। हम अपने घर से वहां तक चलकर जाने की जहमत उठा रहे हैं पर वो कचरा उस डब्बे में ना डालकर उस तरफ फेंकने में आसानी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, जब दो कदम वहां तक चले ही गए हैं तो कचरा उसके अंदर डाल दें तो कितना सहज हो जाएगा जो वहां साफ करने

जाते हैं उनके लिए भी उतना ही सरल होगा। और तो और उससे भी ज्यादा एक और चीज बहुत ज्यादा देखने मिलती है, जब भी कचरा सफाई का नाम होता है तो उसे आग जला दी जाती है, आग लगा दी जाती है। अरे भाई, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, हम और आप जो तकलीफें झेल रहे हैं, जो सांस की दिक्कतें बढ़ रही है, वो सब भी तो हो ही रही है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर और भी देंगे ध्यान ऐसी ही बातों पर, पहले इस गीत की ओर ध्यान देते हैं।

इस तपती सूरज की गर्मी को जितना दोष दो उतना कम है, पर कभी कभी दोष अपने में भी देख लें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि कोई और हमें बुलाए और कहे कि हमें पौधे लगाने हैं जो कि फल फूल कर बड़े हो जाएं और पेड़ बन जाए छायादार। पर अगर ये हम अपने आप से करें और ऐसा करते करते अगर हमारे ही घर में अपने बच्चे हमें ऐसा करते देखें तो उनकी भी आदत में आ जाएगा, तो जो छाया हम ढूंढते हैं इधर उधर वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और तो और हम अपने अलावा अपनी गाड़ी के लिए भी छाया ढूंढ रहे होते हैं कि इसे वहां रखें जहां कहीं थोड़ी छाया हो। अगर वहां कोई जानवर बेजुबान बैठा हो तो हम नहीं परवाह करते कि उसे हटाकर हमारी गाड़ी रखी जाए, क्योंकि हमें लगता है उससे ज्यादा जरूरत इस छाया की तो हमारी गाड़ी को है। जी हाँ, जब इतने मतलबी हम इंसान बनते जाएंगे तो कैसे ढूंढेंगे अपने लिए कुछ अच्छा, वो ठंडी वो शीतल छाया जो हमें पेड़ देते हैं। वो तो दे देंगे, पर हम उन्हें जब घर लाएंगे अपने आसपास लाएंगे तो ये बेहतर जगह और बेहतर नजर आने लगेगी।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसे क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपने ट्यून किया है अपना रेडियो सेट FM बैंड 102.1 FM सन सिटी पर। एक विशेष सूचना, मदार पालनपुर रेलखंड के मध्य RCC बॉक्स लॉन्चिंग कार्य से कुछ रेल सेवाएं रद्द हो गई है और कुछ के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेलखंड के बीच में कुछ RCC बॉक्स लॉन्च किए गए हैं, उसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। और मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार कुछ रेल सेवाएं जो प्रभावित रहेंगी उनमें से कुछ इस प्रकार है। रद्द रेल सेवाएं जो प्रारंभिक स्टेशन से होंगी उनमें पहले नंबर पर आती है गाड़ी संख्या 14821 यानी जोधपुर साबरमती रेल सेवा दिनांक 28/5/2026 और 29/5/2026 को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 14822 यानी जो साबरमती से चलकर जोधपुर आती है 29/5/26 व 30/5/26 को रद्द रहेगी। कुछ गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित कर रद्द रेल सेवाएं जो इस प्रकार है। गाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़ दादर एक्सप्रेस रेल सेवा दिनांक 29 मई को हनुमानगढ़ से प्रस्थान करेगी व परिवर्तित मार्ग लूनी भीलड़ी महसाना होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा समदड़ी जालोर मारवाड़ भीनमाल भीलड़ी पाटन स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेल सेवा पाली मारवाड़ मारवाड़ जंक्शन सोमेश्वर रानी फालना सुमेरपुर जवाईबांध पिंडवाड़ा आबू रोड पालनपुर व ऊंझा स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी। वहीं गाड़ी संख्या 20944 भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस रेल सेवा जो दिनांक 29 मई 2026 को भगत की कोठी से प्रस्थान करेगी व परिवर्तित मार्ग वाया लूनी भीलड़ी महसाना होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा समदड़ी जालोर मारवाड़ भीनमाल भीलड़ी पाटन स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेल सेवा पाली मारवाड़ सुमेरपुर जवाईबांध आबू रोड व पालनपुर स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी। गाड़ी संख्या 20943 बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी रेल सेवा जो दिनांक 28 मई 2026 को बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी व परिवर्तित मार्ग वाया महसाना भीलड़ी लूनी होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा पाटन भीलड़ी मारवाड़ भीनमाल जालोर व समदड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेल सेवा पालनपुर आबू रोड सुमेरपुर जवाईबांध व पाली मारवाड़ स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी। गाड़ी संख्या 20496 हड़पसर जोधपुर रेल सेवा जो दिनांक 28 मई 2026 को हड़पसर से प्रस्थान करेगी व परिवर्तित मार्ग वाया महसाना भीलड़ी लूनी होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा पाटन भीलड़ी मारवाड़ भीनमाल जालोर व समदड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेल सेवा पालनपुर आबू रोड पिंडवाड़ा सुमेरपुर जवाईबांध फालना रानी सोमेश्वर मारवाड़ जंक्शन व पाली मारवाड़ स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी।

वहीं एक और गाड़ी साबरमती जम्मू तवी, गाड़ी संख्या 19223 जो दिनांक 29 मई 2026 को साबरमती से प्रस्थान करेगी, वह परिवर्तित मार्ग वाया मेहसाना भीलड़ी लूनी होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा पाटन भीलड़ी मारवाड़ भीनमाल जालोर व समदड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेल सेवा उंझा सिद्धपुर पालनपुर आबू रोड पिंडवाड़ा सुमेरपुर जवाईबांध फालना मारवाड़ जंक्शन और पाली मारवाड़ स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी। तो कृपया अगर आप ऐसा कोई यात्रा इस तरफ की कर रहे हैं तो गौर करें।

जब कोई अच्छी अच्छी बातें की जाएं तो कभी ऐसा लगता है कि क्या कुछ ऐसा सच में भी होता है? सिर्फ आदर्श बातें करना, कोई ऐसा आदर्श भी है? तो जिस बात की हम बात कर रहे थे उसके बारे में कुछ यूं कहूं?

कि ऐसा राज्य है हमारे ही देश में जो सिविक सेंस, या ये कहें कि नागरिकता के जो मूलभूत पाठ होने चाहिए, वहाँ वो किसी को पढ़ाने नहीं पड़ते। वो सब कुछ ऐसा है कि उनकी आदतों में है। संस्कार के नाम पर अगर ऐसा कहा जाए कि सिविक सेंस के जो आदर्श संस्कार उनमें है, वो अगर थोड़े थोड़े हम सब में भी आ जाए या पूरे देश में फैल भी जाए, तो ये हम सबके लिए तो अपने आप में बेहतर होगा ही, पर पूरे देश की तरक्की के लिए सचमुच बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको कुछ और खूबियां उस प्रदेश के बारे में बताऊं, तो नाम तो हम बाद में बताएंगे, पर ये बताती हूँ कि वहाँ हॉकिंग जैसा कोई कल्चर नहीं होता। जी हाँ, बेवजह कोई हॉर्न नहीं बजाता, सब अपना लेन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अगर लंबी कतार भी है तो अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं, फिर ही अपनी गाड़ी आगे लेकर जाते हैं। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है, आप जिस भी शहर में जाकर देखिए, जहाँ भी थोड़ा भीड़ भाड़ या ट्रैफिक बढ़ने लगता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हॉर्न बजाने से सामने से कोई नया रास्ता बन जाएगा। क्यों बजाते हैं हम हॉर्न? थोड़ा अगर सब्र रख लें तो गाड़ियाँ अपने आप से जो भी खड़ी हैं वो निकलने के लिए ही खड़ी हैं। तो उस प्रदेश के बारे में ये बात काबिले तारीफ है कि वहाँ जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते, और कोई नया अगर वहाँ चला भी जाए तो ये देखकर सबको पता चल जाता है कि वो इस शहर से या इस प्रदेश से नहीं है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जिस प्रदेश की हम बात कर रहे थे अपने ही देश के, उसका नाम है मिजोरम। जी हाँ, हम बात कर रहे थे मिजोरम शहर की कि वो अपने आप में इतना अनूठा है कि उसका सिविक सेंस अपने आप में आदर्श है और हम सबको वहाँ से कुछ सीखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और ये हमारे अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत बेहतर सोच हो सकती है।

0: FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम जयमाला विविध भारती मुंबई से रिले किया जाएगा। उसके लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।

सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है जय माला में। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है दिलजले फिल्म की इस देशभक्ति रचना से, बोल जावेद अख्तर के, संगीत अनु मलिक का, गायक स्वर कुमार शानू और आदित्य नारायण के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार कैलाश खेर। जयमाला कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं उत्सव फिल्म का गीत, रचना वसंत देव की है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक स्वर सुरेश वाडकर का।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। इस कार्यक्रम का अगला गीत उमराव जान फिल्म से हमने चुना है। शहरयार के बोल खयाम का संगीत, आवाज आशा भोसले की।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति का गाया मिस्टर इंडिया फिल्म का यह गीत है। गीतकार जावेद अख्तर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत, अभिजीत और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये दिल लगी फिल्म का गीत। जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: तेजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार जावेद अख्तर, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: ये आवाजें मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और सपना मुखर्जी की। विश्वात्मा फिल्म का गीत आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीतकार विजू शाह।

राग रागेश्री पर आधारित स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, रचना भरत व्यास की, संगीत आदि नारायण राव का, आवाज लता मंगेशकर की। और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में शहनाई फिल्म का गीत जो राग पीलू पर आधारित है। बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीतकार रवि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

और अब श्रोताओं, राग गारा पर आधारित अभिमान फिल्म के गीत की बारी है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

आज के राग अनुराग कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत राग भैरव पर आधारित है। अनुराग फिल्म से गीत हमने चुना है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत SD बर्मन का, आवाज लता मंगेशकर की।

0: इसी के साथ राग अनुराग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।
1: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
2: यहाँ आओ।
3: हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गज़ल पेश करेंगी।
4: ओह नो,
2: ओह यस,
4: प्लीज, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से।
2: कम ऑन,
4: ओके ओके,
2: साइलेंट, साइलेंट।
4: क्या सुनाऊं? अच्छा, एश किया है

0: तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है विकी।
1: अरे मैंने देखा ही नहीं,
0: कहाँ खो गई थी?
1: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
0: ओह आई एम सॉरी, माफ करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
1: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
0: ये लो।
1: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
0: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
1: कहाँ केवी, तुम ही को तो ढूंढ रहा था।
0: आई डोंट बिलीव यू।
1: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
1: ओ सुनो अजीब आओ,
0: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे केवी, ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
0: मैं अभी आई।
2: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
1: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
1: तुम तजर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
2: मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बनी थी।

0: तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
1: जाहिर है, पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
0: डोंट बी सो सीरियस,
1: आओ बाहर चलो।
0: नीना आई है।
1: ओ यस, ये साथ उसके डैडी आए हैं क्या?
0: डोंट बी स्टूपिड, उसका हस्बैंड है।
1: नहीं यार, ये तो उम्र में नीना से कम 20 साल बड़ा लगता है।
0: लगता ही नहीं है भी।
1: सच? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
0: क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता?
1: कैसे हो सकता है, मैं नीना को अच्छी तरह से जानता हूँ।
0: ये मुझे नहीं मालूम।
1: अरे भाई, किसी जमाने में बहुत दोस्ती थी हमारी।
0: अच्छा।
1: जानते हो, हमारी पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। उन दिनों मैं जर्मनी से लौटा ही था। एक रोज शाम को ग्रीन लाइट के बाहर मैं किसी का इंतजार कर रहा था।
2: कीवी का?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, कीवी से तो मुझे नीना ने ही बाद में इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई और थी, तुम नहीं जानते उसे।

0: ये तो मुझे नीना ने ही बाद में इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई और थी, तुम नहीं जानते उसे।
1: हाँ तो फिर क्या हुआ?
0: मैं वहां खड़ा इंतजार कर रहा था, काफी देर हो चुकी थी, वो नहीं पहुंची। तभी अचानक मैंने देखा एक लड़की भी वहां मेरी ही तरह खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, वो भी काफी देर से खड़ी खड़ी बोर हो चुकी थी। एक आध बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खड़े खड़े इंतजार करते रहे। तब अचानक मेरी तरफ वो बढ़ी और मैं
2: आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं?
0: जी जी हाँ, किसी को यहाँ 6:30 बजे आना था।
2: और वो नहीं आई?
0: आई
2: ऑफ कोर्स, अगर किसी लड़के को आना होता तो आप 10 मिनट इंतजार करके चले गए होते, और अगर आप अपनी बीवी का इंतजार कर रहे होते तो आप इतने बेचैन न होते।
0: आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी
2: अच्छी होती तो मैं वक्त पर न पहुँच कर आधा घंटा लेट आता।
0: आई सी, आप भी किसी का?
2: जी हाँ, उसे भी 6:30 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग वक्त तय करते वक्त ये क्यों नहीं सोच लेते कि वो वक्त पर पहुंच भी सकते हैं या नहीं।
0: कई बार ऐसा भी हो जाता है, यू नो 11th आवर पर कोई काम निकल आता है।
2: काम क्या होता है, आदमी की विल स्ट्रांग होनी
0: चाहिए। देखिए अब हम दोनों को ही इंतजार करना है तो क्यों ना अंदर बैठ के किया जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद मी।
2: मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं, अकेले बैठना बहुत ऑड सा लगता है।
0: मुझे भी, इसीलिए तो आइए ना।
2: चलिए।
3: सर
0: दो कॉफी, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे?
2: नो थैंक्स, बस कॉफी ठीक रहेगी।
0: बस दो कॉफी ले आप।
3: यस सर।
2: जगह मुझे बहुत पसंद है, आप यहाँ अक्सर आते हैं?
0: नहीं नहीं, यूं ही कभी कभी। आप जिनका इंतजार कर रही थी
2: वो... friend of mine.
0: नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था अगर वो इस वक्त आ जाएं तो आपको मेरे साथ बैठा देखकर बुरा तो नहीं मान जाएंगे?
2: ओह नो, वो क्यों बुरा मानने लगा, उससे मेरी अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की थी, 7 बजे की नहीं। आप अपनी बात कीजिए।
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
2: शुगर?
0: एक चम्मच।
2: गुड, मेरी कॉफी में सिर्फ एक चम्मच चीनी पसंद।
0: मेरा ख्याल है ज्यादा मीठा डालने से कॉफी का मजा खराब हो जाता है, वैसे यूरोप में लोग कॉफी बिना चीनी और दूध के पीना ही पसंद करते हैं।
2: तो आप यूरोप हुए?
0: जी हाँ, मैं हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गया था।
2: क्या करते हैं
0: आप? मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल्स में स्पेशलाइजेशन किया।
2: आई सी, आपने फॉरवर्ड मोटर्स का नाम तो जरूर सुना होगा।
0: जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी फर्म है,
2: मेरे डैडी ही उसके मालिक हैं।
0: ओह आई सी।
2: कॉफी अच्छी है?
0: जी हाँ जी हाँ,
2: मैं भी डैडी के साथ अमेरिका गई थी, लौटते हुए यूरोप जाने का भी इरादा था, लेकिन डैडी को जल्दी इंडिया वापस पहुंचना था, बस जान से नहीं मिला। वहाँ कितना कुछ है देखने को।
0: बहुत, लेकिन मैं भी ज्यादा घूमा नहीं, बस पढ़ता ही रहा।
2: Really? How unlucky.
0: आपके दोस्त आए नहीं?
2: आपकी भी तो
0: वो तो बाहर से ही लौट गई होंगी।
2: Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से आप?
0: नहीं नहीं, आपसे मिलना भी तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी।
2: आपने तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं
0: सुना। तो आइए अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर लें, मेरा नाम विक्रम है।
2: मीना, मैं साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
0: उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे।
2: ओह नो, बल्कि आपने तो मुझे और बोर होने से बचा लिया। अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं
0: अभी?
2: नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस या
0: बिजनेस के लिए पैसा चाहिए मैडम, वो मेरे पास नहीं है। सर्विस कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ।
2: बिग शॉट,
0: बस रोटी पानी का खर्चा चल जाता है।
2: एक पर्सनल सवाल पूछूं?
0: पूछिए।
2: आप एंगेज्ड हैं?
0: ओह नो। आप?
2: डैडी जल्दी ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं, पर मैं अभी नहीं चाहती।
0: ठीक ही है, यू लुक स्वीपिंग।
2: आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं मिस्टर विक्रम।
0: अब आपकी और हमारी दोस्ती हो गई है, मेरा ख्याल है आप मिस्टर हटा सकती हैं। वैसे कॉलेज में यार दोस्त मुझे विकी कहकर भी पुकारते थे।
2: अच्छा?
0: जी हाँ।
2: सच बहुत मजा आया आपसे मिलकर, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए, घर पर आज डिनर है, कुछ लोग आ रहे हैं।
0: ओह श्योर।
2: अगर आप बुरा ना माने तो मैं दे दूं?
0: आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं।
2: अच्छा फिर कभी मिलिएगा, कभी घर पर आ जाइए या टेलीफोन ही कर लीजिए।
0: ओह श्योर, आपसे तो हमेशा ही मिलकर खुशी होगी।
2: गुड नाइट।
0: गुड नाइट। खूब, बस फिर टेलीफोन कॉफी अपॉइंटमेंट करते करते हम लोग लगभग रोज ही मिलते। एक आधा कमला

0: तुम नहीं जानते हो
1: वही जिसका तुम तब इंतजार कर रहे थे।
0: हाँ, वो भी नीना से मिली, लेकिन दोनों के बीच इतना फर्क था कि निभ ना सकी। उन दिनों मेरे दिमाग में अजीब हलचल थी, समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है, किधर जाना है। कमला ने कभी मुझसे साफ साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैं जानता था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नीना सिर्फ दोस्त थी, शादी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी उससे मिलने को, उससे बातें करने को बहुत मन करता था। हम लोग ग्रीन लाइट में घंटों बैठे बेशुमार बातें किया करते। मुझे याद है एक रोज मैंने इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ी।
2: शादी विकी, मैं समझती हूँ एक अरेंजमेंट है, इसकी बुनियाद किसी भी सेंटिमेंट, मेरा मतलब है भावनाओं पर नहीं रखनी चाहिए। आज के जमाने में चाहे अच्छा समझ लो या बुरा, जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। और ये जो फजूल लव, प्रेम, इश्क, मोहब्बत की बातें हैं ना, सिर्फ अनपढ़ लोगों को ही अपील करती हैं, वही कम से कम मुझे तो नहीं करती।
0: लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मैं कमला को नहीं भूल सकता।
2: क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और उसकी भी शादी नहीं हुई, और फिर भूलने की जरूरत भी क्या है, शादी के बाद भी तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हो।
0: मैं तो जब भी ऐसी बात सोचता हूँ एक अजीब सा डिप्रेशन होता है।
2: हो सकता है, बचपन में इमैच्योर माइंड होता है ना, बस इसीलिए भावुकता हावी हो जाती है। और उस भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें। देखो ना, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ सोसाइटी में उठना बैठना है, तुम्हारे इंटरेस्ट और उसके शौक एक से होने चाहिए। भी बुरा ना मानना विकी, बट कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
0: नहीं, बुरा मानने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, कई लिहाज से मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर मैं कितनी बातें कर सकता हूँ।
2: इसीलिए ना कि इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब अगर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए तो हम दोनों के
0: छोड़ो, ऐसी बात सोचने से भी क्या फायदा।
2: क्यों नहीं विकी, आखिर क्यों नहीं? तुम इसलिए ये बात कहते हुए डरते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ?
0: ये भी एक अहम वजह है।
2: गरीब लड़की अगर किसी अमीर आदमी से शादी करके उसकी दौलत में शेयर कर सकती है, तो तुम मेरी दौलत से भागते क्यों?
0: छोड़ो नीना, मुझे उलझन होती है।
2: तुम्हें अपने आप पर एतबार नहीं है विकी?
0: हो सकता है, लेकिन जाने क्यों मुझे ये लगता है ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे डैडी,
2: मेरे डैडी को मेरी खुशी चाहिए, और अपनी खुशी के लिए मुझे तुमसे बढ़कर और क्या मिल सकता है।
0: नीना,
2: सिर्फ एक बार विकी, प्लीज मेरे साथ चलकर डैडी से मिल लो।
0: अच्छा,
2: अभी, आज ही, इसी वक्त।
0: इसी वक्त? ये कौन सा वक्त है, डिनर टाइम हो रहा है।
2: नहीं, अभी अभी।
0: अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, चलो।

यादों की परछाइयां, इस नाटक का अभी आपने तीसरा भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग कल सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। अगला कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ान फिल्म के गीत से। संगीतकार अमित त्रिवेदी, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, आवाजें अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की।

कार्यक्रम का अगला गाना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में है, शकील आजमी के बोल, चिरंदन भट्ट का संगीत, फिल्म का नाम 1920 एविल रिटर्न्स।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

शान की आवाज में आप सुन रहे थे तुम मिलो तो सही। इस फिल्म का शीर्षक गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ, संगीतकार संदेश शांडिल्य। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। बेवकूफियां इस फिल्म के लिए अन्विता दत्त का लिखा ये गीत श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में है। संगीतकार रघु दीक्षित।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नेहा कक्कड़ और विशाल मिश्रा की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार राजशेखर, संगीत विशाल मिश्रा का। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया

0: कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वही विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर

0: कार्यक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिनचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिनचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना दिए हैं। वैभव सूर्य

0: सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत नाइट इन लंदन फिल्म से, आनंद बख्शी के बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगले गीत में मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज है। लाट साहब फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी का रचा हुआ है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

कैफी आजमी के बोल खयाम का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी खत फिल्म का गीत। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आती। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में

सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए

बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं न कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाना में हमको हराया, तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाते हो? ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो। अयो अयो।
0: सन 1965 फिल्म

1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है, जो उनसे ये गाना सुन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
2: खामोशियां

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। यह वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान।

सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छाया की।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, नुकसान होने से बचाओ, वीको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ।
2: ब्लीडिंग गम्स, स्वोलन गम्स या पायोरिया से परेशान, अपनाइए वीको वज्रदंती जो मसूड़ों को मजबूत रखता है और दांतों को स्वस्थ बनाता है। वीको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहां, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों? खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

0: छाया गीत कार्यक्रम में लेते हैं अब एक अंतराल।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता, अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

0: जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।
1: दिल शाद था के

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है। न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही।

और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास की आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।